फिर उससे कहा गया कि महल में चलिए। जब उसने उसके फर्श को देखा तो उसे पानी का हौज समझा और कपड़ा उठाकर अपनी पिंडलियां खोल दी। सुलेमान ने कहा, यह ऐसा महल है जिसके नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। वो बोल उठी कि परवरदिगार, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही थी और अब मैं सुलेमान के हाथ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ।

وضرب

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं,

0: man.
1: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, सफर की पहली और जुलाई की 16 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पायदार अमन के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की क़रारदादों और बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया है। नायब वज़ीर आज़म आज से चीन का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया ने दरीना दो तरफा शराकत दारी मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया है। अक़वामे मुत्तहिदा ने पाकिस्तान को आफात से निपटने का जदीद निज़ाम इख्तियार करने पर सराहा है। लबनान और इसराइल ने जनूबी लबनान से इसराइली फोर्सेज के इनखला के लिए पायलट जोन्स के क़याम पर इत्तेफाक किया है। फुटबॉल आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन रात अटलांटा में इंग्लैंड को 1-1 में 2 गोल से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पायदार अमन के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की क़रारदादों और बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार और अक़वामे मुत्तहिदा में गयाना के मुस्तक़िल मंदूब कैरोलिन रोड्रिक्स के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान कही। वज़ीर आज़म ने आलमी तरक्याती एजेंडे के हुसूल के लिए बैनुल अक़वामी तआवुन बढ़ाने पर भी जोर दिया। कैरोलिन रोड्रिक्स ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की गिरां कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई रवाबित और पायदार तरक्की के फरोग के लिए इलाकाई तआवुन को फ़ाल बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। ये बात उन्होंने जनूबी एशियाई इलाकाई तआवुन की तंजीम सार के सेक्रेटरी जनरल सफीर मोहम्मद गुलाम सरवर से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने इस्लामाबाद में उनसे अलविदाई मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सार के मंशूर के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। सार के सेक्रेटरी जनरल ने तंजीम के सरबराह के तौर पर अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज से चीन का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्याम के लिए दस्तखतों की तकरीब में वो शिरकत करेंगे और बानी रुकन की हैसियत से पाकिस्तान की जानिब से इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौके पर इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात समेत दीगर हम मनसबों के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू के लिए मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया ने दरीना दो तरफा शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान हुआ। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने का हुकूमती अज़्म दोहराया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए माशी इस्तेहकाम की बहाली में पाकिस्तान की पेशरफ्त का खैर मकदम किया और पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे के लिए बरतानिया की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान और शंघाई तआवुन तंजीम ने सकाफत वर्से के तहफ़ सयाहत और अवामी सतह पर रवाबित के फरोग में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। ये इत्तेफाक राय वफाकी वज़ीर कौमी वर्सा और सकाफत औरंगजेब खान खिची और SCO के सेक्रेटरी जनरल नोरलान यर्मेक बायोफ के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान हुआ। वफाकी वज़ीर ने शंघाई तआवुन तंजीम के मकासद और उसूलों के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। اقتصادی امور کے وزیر آہد چیمہ کی زیر صدارت اسلام آباد میں ایک اجلاس میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم جمشید خودیوف کے آئندہ دورہ پاکستان کے سلسلے میں بین الوزارتی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ دورے کے دوران ایک کاروباری فورم بھی منعقد کیا جائے گا جس میں ازبکستان کی 100 سے زائد کمپنیاں شرکت کریں گی جو پاکستان میں سرمایہ کاری، تجارت اور مشترکہ منصوبوں کے مواقع کی تلاش میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں. وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے آئندہ 6 ماہ کے دوران ریلوے میں 70 پاور پلانٹس، 43 انجن اور نئی تیار کردہ مسافر بوگیاں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے. اے بی پی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے مسافروں اور مال بردار گاڑیوں کے خدمات میں نمایاں بہتری آئے گی، سفری سہولیات میں جدت اور محکمے کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوگا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. ادویہ ساز، صحت اور بائیو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں 2 روزہ پاکستان چین کاروبار سرمایہ کاری کانفرنس کل سے شروع ہوگی. کانفرنس میں 6 اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی جن میں دوا ساز اجزاء، بائیو ٹیکنالوجی اور ویکسینز، طبی آلات، ادویات اور ٹیکوں کی تیاری، طبی آزمائش اور تحقیق اور چینی نباتیاتی ادویات شامل ہیں. کانفرنس کے موقع پر مہارتوں کے فروغ کے حوالے سے ایک تکنیکی اور پیشہ وارانہ تعلیمی تربیت فورم کا انعقاد بھی کیا جائے گا. پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چوہدری نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات اعلان کردہ شیڈول کے مطابق رواں ماہ کی 27 تاریخ کو شفاف طریقے سے منعقد ہوں گے. انہوں نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رانا محمد قاسم نون کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزاد جموں کشمیر کے 10 میں سے 9 اضلاع میں معمولات زندگی بلا تعطل جاری اور وہاں سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں. گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے لیے 20 ارب روپے مالیت کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے. اسمبلی کے اجلاس کی صدارت سپیکر عمران ندیم نے کی. اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے پھر ہوگا. انسانی ہمدردی کے امور اور ہنگامی امداد کے بارے میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار ٹام فلیچر کی سربراہی میں اعلی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت سپیکر عمران ندیم نے کی. اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے پھر ہوگا. انسانی ہمدردی کے امور اور ہنگامی امداد

0: सराहा। ईरान में पाकिस्तान के सफीर इमरान अहमद सदीकी ने पाकिस्तान हाउस तेहरान में अपने सऊदी हमनसब अब्दुल्ला बिन सऊद अल गजीजी से मुलाकात की है। फरीकैन ने मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को फरोग देने के मुश्तरक अज़्म का इआदा किया। लबनान और इसराइल ने जनूबी लबनान से इसराइली फोर्सेज के इनखला के लिए पायलट जोन्स कायम करने का फैसला किया है। ये फैसला रोम में दो रोजा मुज़ाकरात के इख्तिताम पर किया गया। उधर अमरीका ने इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज करार दिया है। उर्दू के नामवर शायर अदीब अदाकार और रेडियो ड्रामा के फनकार हिमायत अली शायर की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 14 जुलाई 1926 को बरतानवी हिंद के शहर औरंगाबाद में पैदा हुए। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम किया। वो 1951 में पाकिस्तान मुंतकिल हो गए और रेडियो पाकिस्तान कराची से अपने शानदार फनी सफर का आगाज किया। हिमायत अली शायर के शेरी मजमुओं में मिट्टी का कर्ज, तिश्नगी का सफर, हारून की आवाज और हर्फ हर्फ रोशनी शामिल हैं। उनके मुतअद्दिद गीत जिनमें ना छुड़ा सकोगे दामन और जाग उठा है सारा वतन शामिल हैं, बेहद मकबूल हुए। हिमायत अली शायर को फन के फरोग के लिए उनकी खिदमात पर सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया, जबकि फिल्मी दुनिया में उनको निगार अवार्ड भी दिया गया। वो 2019 में आज के दिन कैनेडा के शहर टोरंटो में इंतकाल कर गए। फुटबॉल आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन रात अटलांटा में इंग्लैंड को 1-1 मुकाबले में 2 गोल से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। तीसरी पोजीशन के लिए मैच हफ्ते की रात 2 बजे मियामी में खेला जाएगा। फुटबॉल आलमी कप का फाइनल इतवार को न्यू जर्सी स्टेडियम न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, बालाए खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, बलोचिस्तान और जनूब मशरकी सिंध में शाम और रात के औकात में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जे हरारत, इस्लामाबाद 26 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर, कराची और पिशावर 29, कोयटा 25, गिलगित 19, मरी 16, मुजफ्फराबाद 23 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जजवी तौर पर अबरालूद और मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर और लेह में मौसम खुश्क जबकि जम्मू में गर्म और मरतूब रहेगा। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर और अनंतनाग में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 28, लेह 8, पुलवामा और शुपियां 18 जबकि बारामूला में 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तजियों के लिए आई हमारी वेबसाइट radio.gov.pk पर।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी है कुशादा दामनो दिल और जमीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देखकर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुसरत बलोच।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्न-ए-नाज़ में।

101 FM.

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: आसमां को छूते जाएं हम जश्न आजादी पे, यही है
1: Telenor, the smart call. 101 FM.

0: 101 FM
1: Coke Studio, Season 14.

0: इंटेलिजेंट इज रेलेवेंट टू दैट कि आपने किस तरीके से अपने इमोशंस को।
1: One FM.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.

0: 8 a.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Thursday, 1st of Safar al-Muzaffar, July the 16th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has stressed the need to implement the United Nations resolutions and international treaties for sustainable peace. The Deputy Prime Minister will undertake a two-day visit to China from today. Pakistan and the United Kingdom have agreed to further deepen the long-standing bilateral partnership. The United Nations has lauded Pakistan for adopting modern disaster management system. Lebanon and Israel have agreed to establish pilot zones in southern Lebanon for initial withdrawal of Israeli forces. In the FIFA World Cup 2026, Argentina qualified for the final, beating England by 2-1 in the second semi-final in Atlanta last night.
1: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: Government securities में invest करना है. आज apply करने का आखिरी दिन है और bank के time भी खत्म होने वाला है.
1: मुझे bank जाने की क्या ज़रूरत है? Invest Park है ना?
2: Invest Park?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
2: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
4: दिस इज FM 101.
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने सार्क के मंशूर के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अजम का इयादा किया है। पाकिस्तान और शंघाई ताउन तंजीम ने सकाफत और वर्से के तहफ़ के लिए ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया है। उर्दू के शायर और रेडियो ड्रामा के फनकार हिमायत अली शायर की 7वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फुटबॉल आलमी कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन रात अटलांटा में इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर फाइनल में पहुंच गया है।
1: This is FM.
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
1: This is FM 101.
4: I love FM 101. Suror Sangeet, Sazo Awaaz. आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.1.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: दिस इज FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

This is FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर दो रोजा सरकारी दौरे पर शंघाई रवाना हो गए हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल सरमायाकारी के अमल को मजीद मौसर बनाकर पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए और ज्यादा पुरकशिश बना रही है। मराकश ने गजा के लिए बैन अलाक्वामी स्टेबिलाईजेशन फोर्स में शमूलियत के लिए माहिदे पर दस्तखत किए हैं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की अंडर 19 खवातीन टीमों के दरमियान दूसरा T20 कल कराची में खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: This is FM. This is FM 101. This is FM 101.
5: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: खवातीनो हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। ज़रा तवज्जो फरमाएं।

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा।
1: सुर और संगीत साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: I love FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: हक जदों सीने लाया दिल होया रोशन।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101. A bale bale, o shower.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

कितना रोया था मैं तेरी खातिर। कितना रोया था मैं तेरी खातिर। अब जो सोचूं तो हंसी आती।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की दस्तखतों की तकरीब में शिरकत के लिए शंघाई रवाना हो गए हैं। दफ्तर खारजा ने कहा है कि लाह अमल है। वज़ीर आला पंजाब में चनियोट, सियालकोट, ओकाड़ा, मरी और लिया समेत मजीद 5 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज किया है। सिंध हुकूमत ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के जरिए 1,72,000 मैट्रिक टन गंदम बरामद कर ली है। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार चीन के 2 रोज़ा दौरे पर शंघाई रवाना हो गए हैं, जहां वो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के दस्तों की तकरीब में शिरकत करेंगे।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: सुनते रहिए FM 101, 101, 101.

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101। सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101। सुनते रहिए FM 101।

ये दुनिया झूठी, लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। सबात पार्टिन और रैक स्टार आपको वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर

सुनते रहिए FM 101 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के बारे में मुआहदे पर दस्तखतों की तकरीब में शिरकत के लिए शंघाई में हैं। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अमन के फरोग के लिए बदस्तूर एक पायदार लाहे अमल है। भारत के गैर कानूनी ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारत पहले से भारी जंगी तैनाती वाले इलाके में हंगामी बुनियादों पर इजाफी नफरी तैनात कर रहा है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो की

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी।

थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका हुकाम को पेट्रोलियम मसनूआत की मसनू किल्लत पैदा करने में मुलविस सनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की है। पाकिस्तान ने आलमी मसनू जहानत तआवुन तंजीम के क्याम के बारे में मुआहदे पर आज शंघाई में दस्तखत किए हैं। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अमन के फरोग के लिए बदस्तूर एक पायदार लायामल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन की 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल कराची में खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music, and then there's magic. One above. FM 101.
5: Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked.

0: तारा बन गई मशीन।
1: There's music and then there's magic.

0: बीट चले बोलने का दिल नहीं करता बहरहाल। सुनने वाले अक्सर लोग कहते हैं यार कितने बद साइका हैं आप लोग, तुम लोगों को म्यूजिक का मजा ज्यादा आता है, लिरिक्स नहीं सुनते। बहरहाल जी आगाज़ गुफ्तगू है इन अल्फाज के साथ कि आप जहां पर भी हैं जैसे भी हैं आई होप यार एंजॉयिंग योर डे। और कहने को तो बहुत सारी बातें होती हैं, मेरा आगाज़ गुफ्तगू जो है स्क्रिप्टेड तो होता नहीं सिवाय एक दो लफ्ज़ों के, वो यही हैं वो जो आवाज़ की दुनिया वाला एक लाइन है, इसके अलावा तो बाकी जो बातें हैं वो अंदर से निकलती हैं और अंदर से हमेशा यही ख्वाहिश जागती है कि जिस जिस समाज से आवाज़ टकराती है और जिससे नहीं भी टकराती, आई जस्ट वांट टू सी देम हैप्पी। क्योंकि अगर आप खुश हैं, आप मुस्कुराते हैं, आपका दिन अच्छा गुजरता है तो बाहैसियत फर्द वाहिद इसका इम्पेक्ट आपके इर्द गिर्द आता है और इससे माशरा तश्कील पाता है और माशरे से फिर एक खूबसूरत सी सोसाइटी फॉर्म होना शुरू होती है और इवेंचुअली एक पूरे मुल्क और फिर पूरे मुल्क से सफ़र करती हुई एक वाइब फैलती है जिसे कहते हैं एक ऑरा डेवलप होना शुरू होता है पूरी दुनिया में। सो खालिक कायनात से दुआ यही है कि आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और ये जो खालिक ने सुनने की आपको सलाहियत दी, मुझे दी, इसको हम सब्र के साथ इस्तेमाल करना सीखें। साइकोलॉजी से इसके जो आपके कानों में लफ्ज़ पड़ता है अगर अच्छा है तो आप मुस्कुराते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता तो आपके चेहरे की रंगत बदल जाती है, आपके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, आप रिएक्ट करना चाहते हैं और जहां आप रिएक्ट करना चाहते हैं वहां कहा यह जाता है यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 1, 2, 3, 4, 5 ये कहना जहां ज्यादा गुस्सा आए अपने अंदर 5 सेकंड, उससे बहुत सारे मामलात बदल जाते हैं, आपका रिएक्शन चेंज हो जाता है। फौरी तौर पर दिया हुआ जवाब कभी कभी गले की हड्डी बन जाता है तो समातों का बड़ा अमल दखल है। तो आप और मैं अगर अच्छे तरीके से समातों को इस्तेमाल करते रहें और सब्र का दामन हाथ से ना छूटे तो हमारी और बाकियों की जिंदगी बड़ी अच्छी रहे। और मेरा बहुत प्यार वाला और अकीदत मंदाना किस्म का सलाम है तमाम तर फौजी भाइयों के लिए, अफसरों के लिए जो वतन अजीज की हिफाजत के लिए चुने गए और उनकी वजह से हमारा सर फखर से बुलंद है। जहां जहां तक आवाज आती है, लाहौर से ट्रेवल करती हुई मुल्तान, मुल्तान से हैदराबाद से कराची, देन वी आर गोइंग अगेन फ्रॉम लाहौर टू रावलपिंडी, फिर वहां से कश्मीर और केपी के बलूचिस्तान जीबी, जहां जहां तक मेरी आवाज आती है सबके लिए यही दुआ है। एंड जी और जी ने दी, 2 की पॉलिसी बड़ी अच्छी है, मैं सो के उठा हूं। हाँ अच्छा जी, आज हम मौसम किस पे बात कर रहे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज
0: हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप बताओ
1: सर। आज हम बात करेंगे ग्रे पे,
0: ग्रे कलर पे नहीं, आज ग्रीन पे करेंगे,
1: ग्रीन पे करेंगे,
0: आज ग्रीन पे करेंगे,
1: ग्रीन पे करेंगे।
0: Actually, I had a long day as usual, होता है तो उसकी वजह से ना वापस आया, I was really tired, मैं सोना नहीं चाहता था लेकिन क्या करें, मेरे अब्बा कहते थे नींद सूली पे भी आ जाती है।
1: सर सही कहते थे,
0: सही कहते थे,
1: बिल्कुल सही कहते थे। मैं भी ऑफिस से 8:30 बजे आया हूँ, घर वाले सारे आराम फरमा रहे थे, मैं भी सो गया।
0: कितनी तहजीब के दायरे में आराम फरमा रहे थे, कार पा में बंदा कहता सुते पे होने सारे। एनीवेज मेरे साथ यहाँ पे 2 बॉयज हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर स्टेशन है वहाँ पे इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी है, वहाँ पे इंटर्नी है, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक दफ़ा हमें ज्वाइन किया था यहाँ पे अब्दुर्रहमान नासिर ने और आज हमारे साथ 2 बॉयज हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अहमद रज़ा भट्ट फ्रॉम दयाल सिंह ग्रेजुएट कॉलेज एंड आज मैं FM 101 पर RJ डॉक्स के साथ मौजूद हूँ। थैंक यू।
0: वाह वाह, देखा अच्छा, ये होती है फॉर्मल गुफ्तगू,
1: बिल्कुल ऐसी है।
0: आगे माइक पे।
3: अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं अहमद बिलाल और इस टाइम मैं मौजूद हूँ एफएम 101 के लेजेंडरी स्टूडियो में विद द वन एंड ओनली आरजे डॉग्स।
0: हाय हाय हाय हाय, किसी ने कहा था वहाँ जाके तारीफ करना। अच्छा
1: ये आपने तो नहीं कहा था इनको?
0: मैंने नहीं कहा था, उन्होंने खुद ही। चलो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अभी यहाँ पे कलाम लगाते हैं और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। और इससे पहले हम कर चुके हैं ज़ोडिकल साइंस पे भी बात, और आज का दिन फिर मैं दोहराता जाऊँ जी, ये स्पॉन्सर होता है, इसमें एक सेगमेंट होता है जिसमें वी डू आस्क क्वेश्चंस और आप रिप्लाई करते हैं कॉल करके, जो सही जवाब देता है उसको वेलवीरा जो कंपनी है, स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं उनकी काफ़ी सारी, उनकी तरफ से फिर मिलता है 1000 रुपीज का क्या balance. हाँ बैलेंस भेजते हैं। ओके, आप उसका कार्ड डलवाए हैं, जो दिल करता है उसका कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने आज सुनना शुरू किया, खास तौर पे कुछ इंटर्न्स होंगे जो सुन रहे होंगे, उन्हें काफी अजीब सा लग रहा होगा। वही बंदा नहीं है स्टेज पे खड़ा, बड़ा सड़े जे होता है। इसकी शक्ल देख के लग रहा था ये तो बड़ा सड़ा हुआ, यहाँ पे तो काफी हा हा ही कर रहा है। यही तो हम भी आपसे कह रहे, दिस इज हाउ यू हैव टू स्विच योर रोल।
1: बिल्कुल ऐसे ही,
0: कहाँ पे किस तरह से आपने चलना है और किस चीज को किस तरह से लेकर चलना है, यही तो हम कोशिश कर रहे हैं सिखाने की। बताए ना जरा, आपका भाई कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है?
2: सर फिलहाल तो रेडियो पाकिस्तान में बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और जितने हमारे यहाँ पे आरजेज हैं, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन हमें बहुत पसंद आया, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि आपको अपने वर्ड्स की डिलीवरी कैसे बेहतर करनी है, एंड आपको बात करने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए और आप कैसे अपनी बात के अंदर इमोशंस डाल सकते हैं, ये मेन चीज़ हमने सीखी।
0: yes.
3: सर मेरा ख्याल है कि हमें मतलब ये पता होना चाहिए कि हमें कब क्या और
0: यू कैन होल्ड द माइक। हाँ ये इसको पकड़ लो। हाँ हाँ हाँ हाँ होल्ड इट।
3: सर मैं ये कह रहा था कि मतलब हमें जो यहाँ से सीखने के लिए मिला है उसमें सबसे पहले ये चीज़ है कि हमें ये पता चला है कि हमने कब क्या कैसे और क्यों बोलना है, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत एक अच्छी चीज़ है और ये वो बेसिक्स हैं जो हर बंदे को पता होनी चाहिए, जिससे आगे कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती हैं। और इसके अलावा जो डिसिप्लिन है वो हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है यहाँ पे, क्योंकि अगर डिसिप्लिन आपको कहीं से मिल जाता है तो इससे बेहतर और भी कोई चीज़ नहीं होती, आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, होता यही है। लेकिन एक मेरे जहन में अक्सर बात आती है यहाँ पे मोहसिन, और वो बाहर शाह जी बैठे सुन रहे होंगे, मैं अक्सर यहाँ पे बोल रहा होता हूँ ना, प्रोग्राम करते हैं 2 घंटे का कर लिया, और कभी यहाँ पे मैं, यहाँ पे तो नहीं खैर एक और चैनल था वहाँ पे 3 आवर्स का कंटिन्यूसली प्रोग्राम चल रहा है, 2-3 गाने लगाए हैं, बातें ही बस मौजू पे चल रही हैं, और वहाँ पे जब वो बात करनी ना, अब जाहिर है बात तो करनी है आपने, बात करते करते कहीं वो जिक्र आना, हज़रत अली का कॉल सुनाना, अक्लमंद कौन होता है, अक्लमंद उसकी तारीफ करते करते बताना, वो शख्स के जिसका इल्म बढ़ता जाता है और उसकी गुफ्तगू मुख्तसर होती जाती है। तो फिर मैंने कहना मैं 3 घंटे तो बोल रहे हैं, अब मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ आदमी हूँ,
1: अक्लमंद
0: यहाँ शदीद किस्म की काम इल्मी का शिकार हूँ।
1: और अगर ये है तो इसका मतलब है ये है,
0: ये है। जबान बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने एक दफ़ा वहाँ पे खड़े खड़े आप लोगों को ये बात कही थी स्टेज पे कि आपकी आवाज़ आपकी बात कोई नहीं सुनता, ना कोई सुनेगा, ऑलवेज रिमेंबर आपके एक्सप्रेशंस, आपके जज्बात सुने जाते हैं। जिस तरह से वो एक फिल्म भी आई थी जिसमें एक ही लफ्ज़ को मुख्तलिफ अंदाज में बोला जाता है और फिर उसके बाद उसके तासुरात ही बदल जाते हैं। यही चीज़ हमारे साथ भी होती है ना, और अक्सर जब लड़ाई होती, मेरी भी अक्सर दोस्तों से हो जाती है बाहर, तो वो बाद में कहते हैं यही गल तू आराम नाल कह देंदा ना। ये आपके साथ भी होता है, यही बात आराम से कह देते ना
3: जी।
0: तो वो एक्सप्रेशन बाय होता है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। खालिक कायनात ने اپنے کلام الہی میں گفتگو کی تو یہی کہا نا کہ ہم نے تم پہ دو نگہبان مقرر کیے،
1: بے شک،
0: اور تمہارے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ ایسا نہیں جسے مانیٹر نہیں کیا جا رہا تو ہم کیا بولتے ہیں کیا نہیں، آلویز بینگ ریٹن کہ بھئی کیا کرتے ہو. تو زبان سے تیر جتنے دل کرتا ہے چلائیں، لیکن کوشش کریں محبت والے چلائیں،
1: سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو.
0: اچھے اچھے سے
3: سر، یہ کون سی محبت کی بات؟
0: یہ جون سی آپ سمجھ. عشق حلارے دیتا کلام بابا بلے شاہ صاحب کا، ذہن زہے 2018، اس وقت ہائپ بھی نہیں بنی تھی ان کی، تب انہیں سنا کرتا تھا. اینی ویز یو کین کال اس 0422111101 0411 001110001. اور اس کے علاوہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے، آپ نے 101 لکھنا ہے، اسپیس دینی ہے، اپنا نام اور پیغام لکھنا ہے اور اس کو بھیج دینا 4471 پر. اینڈ یو کین واچ مائی لائیو اسٹریم. ابھی اپنے موبائل سے آپ فیس بک اوپن کریں اور سرچ کریں RJ DOX، تو وہاں پہ آپ کو لائیو اسٹریم مل جائے گی. اور یہاں پہ میں ابھی آپ کو یہ اپنے چیتے بھی دکھا دوں، ان سے بھی گپ شپ کریں گے. اینڈ دیر از آلسو اسٹیٹک پوسٹ، یو کین سرچ FM 101 لاہور اینڈ FM 101 چینل پاکستان، ہٹ می ود یور کمنٹس. اور میرا کینوس بہت بڑا، موضوع گفتگو کوئی بھی ہو جو دل کرتا بات کرے، میرا ہاتھ تھامے، جہاں چاہتے ہیں گفتگو کو لے چلے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. یہ پروگرام آپ کے لیے ہے، بار گلاں دیاں گلاں دسین پنجابی، عشق حلارے دیندا. یہ وہ منزل ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کی زبان سے اس کی جنبش چھین لیتی ہے. آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہا نہیں جاتا. دل کرتا ہے کبھی انسان چیخیں مارے، کبھی خاموش بیٹھا رہے، اور کبھی انسان چاہتا ہے کوئی اسے دیکھے، اس کے چہرے کے خد و خال دیکھ کر پڑھ لکھے اندر کیا چلتا ہے. جسم جھومے یا نہ جھومے، روح جھومتی ہے تیرے خیال سے، تو آئے یا نہ آئے، مگر تیرے ہونے کا احساس ہر دم رہتا ہے. ہاں یہی کہیں آس پاس.

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:46 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आपका मेरे साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। 16 जुलाई 2026 का सिन है एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन कलर, ऑफ कोर्स साइकोलॉजी ऑफ ग्रीन कलर पर बात करेंगे। और इससे पहले हमने जो लास्ट टाइम के विनर्स थे उनका क्या क्या नाम था, कैन यू टेल मी। मोहसिन यहाँ पे हैं मेरे साथ,
1: एक मैडम अनिला थी,
0: ओके,
1: और सेकंड नंबर पे उनका नाम था वसीम साहब थे, वकास अहमद, सॉरी वकास अहमद साहब।
0: जबरदस्त हो गया, इस बार देखते हैं कौन जीतेगा जी। और आसान सवाल बिल्कुल नहीं पूछना तुमने। एम अबू बकर जान कहते हैं, सर आई एम प्रिपेयरिंग माय एग्जाम व्हाइल लिसनिंग योर शो। यार ये डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही तुम्हें हैं? और मोहम्मद आरिफ कहते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, कूल कूल मौसम है यार, ना दिल जलाओ। हमारे पास भी बहुत कूल है, जब रज के पसीना आ जाता है ना पंखे के नीचे जाए, बहुत कूल लगता है,
1: बहुत मजा आता है।
0: सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए, जब तक वो पसीना खुश्क नहीं होता। एनीवेज यू कैन कॉल मी 042-111-0101। और कल उस पर बात शुरू करें या कॉल लें?
1: सर पहले कॉल ले लेते।
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
2: बात कर रहा,
0: जोर से बोले, आपकी आवाज नहीं आती।
2: मैं कह रहा हूँ फजल नवाज पिंडी बटिया से बात कर रहा हूँ।
0: पिंडी बटिया से बात कर रहे हैं
2: जी? फजल नवाज बात,
0: फजल नवाज बात कर रहे हैं पिंडी बटिया से
2: जी।
0: सुनाए मौसम कैसा है?
2: मौसम भाई, मौसम बहुत गर्म है, क्या बताऊं आपको भाई
0: जी।
2: तो आप क्या मौसम, आप क्या मौसम क्या था?
0: सर अभी सुबह बर्फबारी हो रही थी, यकीन करें।
2: हाँ वो तो मैं सुन, अभी सुन रहा हूँ कि बर्फ।
0: मैं दो जैकेटें पहन के बैठा हूँ, यकीन करें आप।
2: क्या सोचते हैं यार, यहाँ मैं आपके शो में भिखारी बन कर आया हूँ।
0: मेरे शो में भिखारी बन के आए हैं?
2: मैं ऑन ईयर तो नहीं।
0: आप ऑन ईयर ही हैं, यकीन करें। कुछ ऐसी गल ना ऑन एयर मांग ली।
2: कुछ खास नहीं, बस ये जो आपका बीजिया में ना, इसका मुझे नाम बता दे बस।
0: अच्छा यार, आप बिल्कुल ले, इसमें कौन सी ऐसी बात है भाई, आप ऑलवेज। और यहाँ पे फेसबुक पे भी है। और
2: मैं ब्लाइंड देख नहीं सकता, मैं ना अपने भाई से वो डाउनलोड करवा दूंगा, मुझे बीडीएम।
0: आपने ना, मैं ये कोशिश करता हूँ आज इसको अपने फेसबुक पेज पे मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करवा ले।
2: भाई मेरी बात सुनो, वहाँ से वो मेरे भाई इतना वो चलो मैं करवा देता हूँ, आप मुझे बस नाम बता दे, मैं डाउनलोड करवा लूंगा।
0: सर मेरे पेज पे टॉप पे लगा होगा, आपका नाम क्या है?
2: फजल नवाज।
0: फजल नवाज, आपका नाम लिख के अपलोड कर दूंगा मैं, फजल नवाज के लिए, ठीक है?
2: मैं आपको आपको
0: जल्दी जल्दी से सुना दें फटाफट।
2: अच्छा वो वसीम बरेलवी की है गजल
0: जी।
2: आपको देखता रह गया,
0: हाय आपको देखता रह गया,
2: क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात।
2: आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया।
0: हाय हाय क्या बात है।
2: वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह
0: देखता रह गया। यार बहुत खूबसूरत।
2: आंधियों के इरादे तो अच्छे न थे,
0: ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। बहुत अच्छा, जबरदस्त।
2: अच्छा अगला सुने, वो मेरे दिल के बहुत करीब है कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, छा गए
2: आते आते मेरा नाम सा रह गया।
0: जबरदस्त जबरदस्त, छा गए भाई, छा गए छा गए।
2: असल भाई आपने एक काम करना, आपने कोई शायद की तौर पर मेरे नाम का
0: क्या करनी है,
2: कोई शायद सी शायरी मुझे बैठे
0: सैड सी शायरी आपके नाम करनी है यार। चले ठीक ठीक,
2: वो मेरा नाम लेकर
0: ये मेरे साथ आज दो लड़के बैठे हैं, मैं इनसे पढ़वाता हूँ उदास किस्म की शायरी, इनका लाजमी अभी ताजा ताजा किसी एक का दिल टूटा होगा।
2: इनसे नहीं पढ़वानी, आपने पढ़नी। अच्छा, आपकी आवाज में बहुत दर्द है,
0: आप लाजमी मुझे छेड़ना चाहते हैं। चले ठीक है, ओके ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नहीं टूटे यार, सही बताओ, माइक पे आके बताओ, माइक पे तो आओ। मैं नहीं आऊंगा, आप मेरे से मेरी बातें
1: मैं नहीं पता चलेगा,
0: मैं नहीं बता रहा। हाँ जी, माइक पे आओ।
3: यस सर,
0: जोर से अपना नाम लेके बताना है। कभी दिल नहीं टूटा?
3: नहीं सर,
0: पक्की बात है।
3: यस सर,
0: शर्मा क्यों रहा है भाई?
3: कुछ भी नहीं सर,
0: पक्की बात है।
3: यस सर,
0: हाँ जी, है कुछ ही?
4: नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मैं बचपन से सिंगल हूँ, अभी भी सिंगल हूँ।
1: बचपन से सिंगल
4: और मेरा भी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस हो, कोई एक दफा दिल टूटे, कोई थोड़ी सी अकल आए, लेकिन होता ही नहीं।
1: दिल टूटने से
0: अब आप बचपन में डबल थे?
1: नहीं, मैं शुरू से डबल था।
0: बचपन से सिंगल ही होता है यार बंदा, बात अच्छी है। चलो, बादल पोएट्री कौन पढ़ता है आप में? Someone, anyone. कौन पढ़ता है? थैंक यू वेरी मच जी। आयशा सुल्तान कहती है, मौजू क्या है जुमेरात का दिन है? नॉर्मली आज के दिन हम बात करते हैं कलर्स के ऊपर और सवाल पूछेंगे और बाकी आप लोगों के मैसेज शामिल करता हूँ जहाँ से बता। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच जी। आशिक साहब, आपका मैसेज मिला, आपका बहुत शुक्रिया। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रीन कलर, थोड़ा थोड़ा सा गुफ्तगू को साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ग्रीन कलर के बारे में, ग्रीन कलर आमतौर पर क्या रिप्रेजेंट करता है, आमतौर पर इसके बारे में क्या परसीव करते हैं। और वैसे तो अगर आप पढ़े ना, डॉक्टर भी जिस पर बात करते हैं, साइंस भी ये कहती है, नेचर फितरत का रंग जो है वो भी सबस है।
1: बिल्कुल ऐसी,
0: और खुदा ने फॉर्मेशन इसलिए ऐसी की है कि अगर आपके कहते हैं आंखों को तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, आप सब्जे को देखें तो काफ़ी रिलीफ मिलता है ना।
3: yes.
0: पेन को सुकून मिलता है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स पीस, सुकून की अलामत होता है। इसके अलावा बैलेंस जो है, बैलेंस का भी ये अलामत समझा जाता है। इसके अलावा इट्स अ सिंबल ऑफ ग्रोथ एंड होप और हीलिंग, शफा। आप देखते हैं ग्रीन कलर का अक्सर वो सिंबल भी लोगों ने बनाया होता है, ये शफा खाने होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वाइट के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं ग्रीन का। इसके अलावा फ्रेशनेस, वो तो ऑफ कोर्स है,
1: तो है।
0: फ्रेशनेस से क्या याद आया मुझे, व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन इस्लामाबाद ना, वहाँ पे शक्करपड़िया रोड पे जाना,
1: जी जी,
0: जो वहाँ पे गए हैं उन्हें पता होगा, गए आप लोग?
4: जी जी सर।
0: वो जब बारिश के बाद उस सड़क पे ड्राइव का इतना मजा आता था, इतना पुरसकून, और बारिश के बाद क्योंकि धुल जाती है ना हर चीज और सब्जा निखर जाता है।
4: बिल्कुल सर,
0: ओए होए होए। और अगर साथ कोई हो तो फिर तो मैं कह रहा हूँ आए हाय हाय, और ही मजा।
4: सर आप अकेले जाते थे, आपके साथ कोई होता था?
0: मैं इसलिए तो कहा अकेला जाता था, इसलिए तो इजहार हसरत के साथ कोई हो ना तो क्या ही बात है,
1: क्या ही बात।
0: स्टेबिलिटी भी है जी, इट इज अ सिंबल ऑफ हार्मनी एज वेल। और आप लोगों को वैसे कलर कौन सा पसंद है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर?
3: सर फेवरेट अगर मैं बताऊं तो ग्रीन,
0: ग्रीन
3: बिकॉज ग्रीनरी मुझे वैसे पसंद है, वॉक करना और लॉन्ग वॉक्स पे निकलना, खास तौर पे पार्क्स में हो जाए, वैसे हो जाए, कभी टाइम मिले तो मैं लाजमी वॉक्स पे जाता हूँ, सुबह भी और मोस्टली रात को भी।
0: ग्रीन ज्यादा सबज रंग, ये तो नहीं हुने सबज दी गाल चली आज मैं सबज पसंद सबज। है?
3: नहीं सर, ग्रीन रंग वैसे जेन्युइनली पसंद है मुझे,
0: जेन्युइनली,
3: मतलब कि ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है एंड आपका स्ट्रेस कम करता है। और अगर आप किसी चीज से तंग हो और आप यानी कि लॉन्ग वॉक्स पे चले जाओ तो इट वुड हेल्प अलॉट।
0: ओके ओके, आपको कौन सा कलर?
1: वो ब्लू था, हो गया,
0: हो गया
1: जी जी।
0: भाभी को भी यही पसंद था?
1: कौन सा वाला? नहीं, उनका तो रेड था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वो चेक कर लिया था। अच्छा आपको कौन सा कलर पसंद है?
4: सर मुझे ब्लैक कलर पसंद है
0: वो ले लो माइक ले लो, ब्लैक कलर पसंद है पक्की बात है।
4: जी जी ये जैसे मैंने अभी पहना भी हुआ है, मुझे ब्लैक अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि जो ब्लैक कलर है बेसिकली वो बड़ा मिस्टीरियस कलर है।
0: है भी यही, इसके ट्रेट्स भी यही हैं इसके, अगर करेक्टर्स पे बात की जाए
4: मुझे लगता है बहुत एलिगेंट,
0: तो आपको अच्छा लगता है मिस्टीरियस होना कि लोग समझ ही ना पाए एक्चुअली ये बंदा चीज क्या है,
1: ये है
0: ना, इसके बारे में तजस्सुस का शिकार है, भाई ये की चीज है पता नहीं। पंजाबी में वो कहते हैं सज्जी बखा के खब्बी मारदा है। You like to be a mysterious person, है?
4: ये मतलब mysterious नहीं, मतलब मैं कलर की बात कर रहा हूँ, मुझे कलर ये बहुत elegant लगता है, तो इस वजह से।
0: आपको पता है रंग जो होते हैं इसका इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी चॉइसेस, आपके कलर की पसंद आपकी जात को जो रिफ्लेक्ट करती है कि आप किस तरह के मिजाज के इंसान हैं और आपको क्या चीज पसंद है और क्या पसंद नहीं है। रंग है आपका, हेयर स्टाइल है आपका, उठना बैठना, इवन आप अक्सर नोट करें आपके कुछ दोस्तों की एक ख़ास स्पेसिफिक किस्म की हैबिट होती है, उठने बैठने की एक तरीका होता है, वो एक ख़ास अंदाज में बैठते हैं, ख़ास अंदाज में बाल बनाते हैं, ख़ास अंदाज में हाथ अपने हिलाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफाइंस योर पर्सनैलिटी कि हाँ ये क्या है, किस तरह का बंदा है, कैसा है। और जब किसी के चेहरे में थोड़ा सा आप देखें ना तब्दीली आई, हेयर स्टाइल में अगर तब्दीली आ गई या पहनावे में और उसके उठने बैठने में, तो आप महसूस करेंगे वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इंसान बनना शुरू हो जाता है, उसकी तब चॉइसेस बदल जाती। अगर आज आप अपने आप को भी देखना शुरू, सुनने वाले भी जितने भी हैं आप भी अपने आप को देखें, तो वो बचपन के दिन जब आपको मुख्तलिफ डिशेज पसंद थी खाने में, आज बदल गई चॉइसेस, पहले कुछ और रंग पसंद थे आज चॉइसेस बदल गई, कुछ और पहनना पसंद था, कलर की चॉइसेस बदल जाती हैं। कुछ लोग होते हैं मतलब बींग अ गर्ल, अब सारी लड़कियों को पिंक कलर पसंद नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। और फिर इन सारी चीजों से ही आप यू सिलेक्ट अ पर्सन फॉर योरसेल्फ,
1: बिल्कुल ऐसे ही
0: आपकी सिलेक्शन दूसरों के बारे में भी चेंज होती है कि मुझे किसको अपने साथ रखना है और किसको नहीं रखना, किसके साथ चलना है किसके साथ नहीं चलना, किसके साथ ताल्लुक बनाना है, रिलेशनशिप, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जो हमारे अक्सर क्यास प्रॉब्लम इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट रेड फ्लैग टॉक्सिक किस्म की ये सो इस तरह के मसाइल जो आना शुरू हो जाते हैं, दे आर द रीजन कि हम जज नहीं कर पाते कभी किसी दूसरे को और कभी खुद को। मोस्ट ऑफ द टाइम आई बिलीव हम खुद को जज नहीं कर पाते ना, और हम क्या चाह रहे हैं इसको पहचान नहीं पाते और दूसरों से तवक्को लगाते हैं और फिर कहते हैं ओ यार वो तो थी ऐसी,
1: यार वो चला ही नहीं,
0: यार वो था ही ऐसा, वो था ही शुरू से ही बेवफा था। मेरे अंदर से ना एक आवाज आती थी मेरे अंदर से आवाज आती थी तो एक दिन छोड़ देगा ये, ठीक नहीं है ये छोड़ जाएगी, मैं कहता नहीं यार ये शायद मेरा वहम हो, है ना, इसलिए मैंने दिमाग को छोड़ के दिल की सुनना शुरू कर दी, है ना। इस तरह फिर बंदा आप दूसरों पर इल्जाम देने लगते हैं, वो गलती मेरी थी, मैंने उसको मौका दिया, मैंने उसको करने दिया, मैंने खुद को अंडरस्टैंड नहीं किया पहले,
1: लेकिन आई गेस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
0: लेकिन मैं समझता हूँ ये भी अच्छा है, जरूरी है, होना चाहिए
1: जी, होना चाहिए,
0: है ना। खबरें चेक कर लें,
5: आर्मी पेशरफ्तों पर तबादले ख्याल किया। दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अमन के फरोग के लिए बदस्तूर एक पायदार लाया अमल है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन की 19 साल से कम उम्र खिलाड़ियों की टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल कराची में खेला जाएगा।
0: Hello, जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:01 और 16 जुलाई 2026 है। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ कलर। आप दुनिया में कोई भी काम करें, आप सुबह उठें, मैं सुबह उठता हूँ, मेरे पास 100 काम होते हैं करने के लिए, आपके पास होते हैं 100 चीजें होती हैं, माइंड में हर वक्त चल रहा होता है, और इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। हम किसको क्या प्रायोरिटी देते हैं, क्या करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली उसके साथ गुफ्तगू के अंदाज अपनाते हैं, बदलते हैं। कोई स्ट्रेंजर आएगा उसके साथ और तरह से, कोई अगर अच्छी कॉल आ जाएगी हेलो उस पर और होता है ना आपका बड़ा हंसते यार। देखो मैंने सिर्फ इशारा दिया, अभी भाभी सुन रही मेरी गाल पे तो तुम इतना कभी खुश नहीं होते।
1: सब पता है, मैंने कुछ नहीं छुपाया।
0: अच्छा हिम्मत है यार तेरी। मैं तो इतने बंदे रोंदे ही वेखे
1: ने। मैं पहले माफी मांग लेता
0: हूँ। ये भी ठीक है। एनीवेज जी कैसर भी कह रहे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, डॉग्स आर उनकी सच्ची सच्ची बातें फरा कह रही है ना, सच्ची सच्ची बातें ऐसे ही है। यहाँ पे एक गाना लगाते हैं उसके बाद वापस आते हैं। एंड आई वाज सेइंग दिस कि कुछ भी आप करते हैं वो सब कुछ आपके अंदर से निकल के आता है। जो आपके करने के लिए आपको मजबूर किया जाए वो हमेशा आपके दिमाग से होता है। वो आप कोशिश करते हैं कि इसको मैं बनाऊं, इसको इस तरह से करूं कि मेरा तासुर अच्छा जाए, और जो आप रूटीन में करते हैं ना आपके अंदर से आता है, वो फितरी चीज़ होती है, उसका इम्पैक्ट और होता है। बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजी, आपकी नफ्सियात, आपके चॉइसेस। तो वो चाहे कलर चॉइस है, चाहे बंदे की चॉइस है या बंदी की चॉइस है। यहाँ पे गाना सुनाऊँ आपको एक अच्छा सा फिट सा, सुनने वालों के लिए भी है ना, खूबसूरत खूबसूरत भी होते हैं ना लोग सुनने वाले। अभी मेरे सामने एक मैसेज आया है, नेम फातिमा, आई लव यू सर। अच्छा ठीक है, 447 उनका मैसेज है। तो मैं जवाब भी नहीं दे सकता
4: सर, लेकिन आपकी मुस्कुराहट ने जवाब दे दिया।
0: नहीं इस तरह आते रहते। थैंक यू वेरी मच फातिमा, थैंक यू वेरी मच। और आपकी मोहब्बत है जी, आपने मैसेज किया एंड आई रियली इसकी कदर करता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मैसेज। जावेद वालेकुम सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। भूल गए जब हम खुद को भी तो बताया लोगों ने वो फूल से लब, अब महफिल में कुछ जिक्र तुम्हारा करते हैं। अच्छा मेहर फातिमा है सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपसे नाराज हूँ। अच्छा, क्योंकि आपने मेरा कल का एक मैसेज रीड नहीं किया, कल और ही सीन था। सॉरी, कल जो है ना इंतहाए बदतमीजी पे चल रहा था काम उस वक्त, इसलिए मैसेजेस मैंने देखे ही नहीं। बड़ी मजा, और कल वाले मेरे मैसेजेस रीड करे, और कल मैंने 4.25 घंटे तक आरजे वसीम के आ जाने के बाद तक पहली दफा रेडियो सुना, बहुत मजा आया। आज रहमान के शो में भी आपको मैसेज किया था, मेरा एक भी मैसेज रीड नहीं किया। ये रहमान आता उसे मैं पूछता हूँ, आप गीम कौन कहता है मोहब्बत आंखों से होती है, दिल तो वो भी ले जाते हैं जो नजरें झुका कर चलते हैं। शेर आप ही ना बहुत भेजती है, कहीं वो इर्द गिर्द से झुका कर मुंह तो नहीं गुजर जाता, कोई ऐसा सीन तो नहीं है? एनीवेज जी आप तक भी मेरी आवाज पहुंची है, आपकी भी कलर चॉइस कौन सी है मुझे बताइएगा। आज हम बात करें ग्रीन कलर पे, इसकी कंपैटिबिलिटी पे भी बात करेंगे और सवाल भी आपसे पूछेंगे। और अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई मौजूद नहीं है तो आपने मुझे SMS करना है, और इसके अलावा कोई भी बात आप चाहे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फातिमा, आपका अगेन मैसेज आया, थैंक यू। अब पता चल गया मुझे दैट यू लव मी। आपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, एक सिर्फ एक लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम लिखना है, 4471 पे भेज देना है, और इसके अलावा कॉल कर सकते हैं 042-111-0101-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001-0001 पूछू। थैंक यू वेरी मच राबिया शफीक। अहमद मलिक सर क्या हाल है? आई एम फाइन, आप बताएं, आप ठीक हैं? अभी यहाँ पे एक गाना बड़ा खूबसूरत सा है, जाने बहारा, शुरू से मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें टर्किश जो है ना इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक के स्टाइल को सेंट्रल एशियन म्यूजिक को ब्लेंड किया गया, जिसकी वजह से आई जस्ट लव द बीट। इफ यू हैव गुड एयरफोन्स देन आई वांट यू टू पुट देम ऑन, फिर आपको मजा आएगा, जिसे कहते हैं चासा आएगी। दिस इज आज़ द डॉक्स, डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। और मेरे साथ जो बैठे हैं मेरे दोस्त, उनसे भी आके गपशप।

0: अच्छा जी, वक्त हो चुका है 11:11 और मुझे मैसेज आया कि आपका BGM बड़ा अच्छा लग रहा है सुनना। अच्छा, थैंक यू। फिर मैं चला जाना, BGM चला के चला जाऊं? मेरा बोलना नहीं अच्छा लगता। अच्छा जी, आज के पहले सवाल हम पूछेंगे। मोहसिन, I want you to ask the first question. Come on. वेलवीरा कंपनी है, स्किन केयर इनकी प्रोडक्ट्स हैं जी, और इनके अगर आप सर्च करेंगे ना, जो वी से होता है, VELVERA, वेलवीरा, अगर आप सर्च करेंगे आपको इनका इंस्टा का पेज मिल जाएगा, वहाँ पे ऑर्डर होता है। और इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और स्किन केयर के हवाले से सिरम है इनके पास। मुझे भी इसने 2-3 चीज़ें दी हैं, वो हमारे पास आप आए थे लेकिन मैं रेगुलर यूज़ नहीं कर सका। फिर मैं कहना मैं करके की कर लेना, आखिर क्या ही कर लूँगा मैं, है ना। ग्लोइंग फेस वॉश है इनका, अच्छा उससे क्या ही हो जाएगा मेरा। ये तो क्या ख्याल है, लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं कि आप भी कोई कर लेते हो प्रोडक्ट यूज?
1: नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं यूज करता,
0: बिल्कुल नहीं करता,
1: कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है मेरा।
0: आप बताएं भट्ट साहब।
2: सर सिर्फ मुंह धोते हैं पानी से।
0: इनकी बीबी क्रीम भी है और इनका, अच्छा खावातीन के लिए भी इनकी प्रोडक्ट्स अलग से मौजूद है। रेटिनल सिरम भी है इनका, जो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, थैंक यू वेरी मच, जो कि मैं अभी तक यूज़ नहीं कर पाया। एंड इनकी है, ये कहते हैं कि हमारी जो है ना जी, UK की कंपनी के जो प्रोडक्ट है, वहाँ की फ्रेंचाइजी है ये जी। एंड आई होप इनकी पैकिंग वगैरह तो बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छे होंगे जी। मोहसिन, डू आस्क द क्वेश्चन।
3: वो कौन सा पहाड़ है जो K2 के बाद पाकिस्तान में दूसरी बुलंद तरीन चोटी समझा जाता है?
0: बट साहब क्या पूछा?
2: सर कौन सा पहाड़ है जो K2 के बाद पाकिस्तान में,
0: खुल के बोलना मेरे भाई ने,
2: कौन सा पहाड़ है जो पाकिस्तान में K2 के बाद सबसे ऊंचा गिना जाता है,
0: सबसे ऊंची चोटी गिनी जाती है? आप सवाल का जवाब देंगे 0421100101, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, आप बताएंगे, और जीतने वाले को वेलवीरा कंपनी की तरफ से मिलेगा जी 1000 रुपीज का कैश प्राइस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रीन कलर और पर्सनैलिटी ऑफ ग्रीन कलर पे बात करते हैं। नॉर्मली जो रिसर्चर्स सेज कहती हैं कि जी नरम मिजाज किस्म के लोग होते हैं, बट पेशेंस लेवल इनका अच्छा होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड यू कैन ट्रस्ट देम
3: जी,
0: है पक्की बात है,
3: पक्की बात है,
0: you can trust आप है कर सकते हैं आप पे
3: yes, क्या है, यू कैन ट्रस्ट मी।
0: माइक के बाद आके बोलने की बात थी यार। I'm trying to trust the green color. Okay. और मतलब कहते हैं फैमिली ओरिएंटेड किस्म के लोग होते हैं।
2: यस सर।
0: हैं? ऐसे ही है। और फैंटेसी में रहना पसंद नहीं करते, हकीकत पसंदी जो है, रियलिटी,
2: रियलिटी चेक देना चाहिए,
0: सामने रखो यार।
2: यस।
0: है या नहीं है,
2: बिल्कुल
0: मैं हूँ या नहीं हूँ, है ना।
2: यस सर।
0: मैंने पसंद कर दी है तो दसते नहीं तो रहने दे, है ना।
3: हाँ या ना,
0: हाँ या ना, ऐसे ही है,
3: तीसरा वर्ड नहीं
0: है। मान गया, मान गया भाई, मान गया।
1: फिर वो पूछे ना कितने लोगों से पूछे,
2: वो ही बताने लगा था, अभी तक एक्सपीरियंस तो नहीं है।
0: अच्छा,
2: इन फ्यूचर
3: यार झिझकने की जरूरत नहीं है।
0: नहीं, वहां पे झिझकना जरूरी है, आगे मार भी पै जाती है, फिर कहना पड़ता बाजी डर गई है।
1: वुमन एम्पावरमेंट पीछे पड़ जाती है।
0: अच्छा जी, दे आर केयरिंग एंड मैच्योर एंड लॉयल लोग होते हैं। और इनकी अगर आप खूबियों के बारे में बात करें, इन्हें दूसरों की हेल्प करना पसंद होता है मोस्टली, और बेहतरीन लिसनर होते हैं। यू कैन टॉक टू देम फॉर आवर्स, सुनेंगे आपको, आप सुन लेते हैं।
2: यस सर।
0: हाँ, मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहा है आजकल, मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ते।
2: बिल्कुल सर।
0: है सही कह रहा हूँ मैं?
2: यस सर।
0: और गुस्सा भी नहीं जल्दी करते?
2: नहीं, ये गलत है थोड़ा।
0: फोर आवर्स सुनेंगे आपको, आप सुन लेते हैं।
2: यस सर।
0: हाँ, मुझे भी एक्सपीरियंस हो रहा है आजकल, मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं छोड़ते।
2: बिल्कुल सर।

0: मेरा मतलब है
1: यार, एक ही साइड पे लेके जा
0: यार। देखो यार तुम समझा क्यों नहीं रहे?
1: मैं समझाता हूँ।
0: एंड गूगल कर रहे हैं जी, माजरीन चले गूगल कर रहे हैं, कॉल लेता हूँ पता चलता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
2: सर।
0: अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम।
2: कैसे हैं सर? ठीक ठाक।
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ
2: जी? अपने आप को कभी कभी आरजे शहरयार कहता हूँ।
0: अपने आप को कभी कभी आरजे शहरयार कहता हूँ।
3: कब कब कहते हैं सर?
0: कभी कभी क्यों कहते हैं? कंटिन्यूअसली क्यों नहीं कहते? मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं है आप में?
2: मुस्तकिल मिजाजी इसलिए नहीं है कि खामोश रहकर गुजार दी है अब मैंने जिंदगी सारी।
0: अरे हाय, खामोश रहकर,
2: खामोश रहकर जिंदगी गुजार दी है अब मैंने सारी,
0: अब मैंने सारी,
2: अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा।
0: अच्छा,
2: तेरे दो बोल लेकर कवारी जिंदगी सारी।
0: वाह वाह वाह वाह, कवारी जिंदगी सारी। ठीक है।
2: तो सर जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक
0: जी? मैं ठीक।
2: लाहौर स्टूडियो से, मेरे सिटी से, मगर इस टाइम मैं इस्लामाबाद में।
0: अच्छा, आप इस्लामाबाद में। हमने एक सवाल पूछा है शहरयार, उसका क्या जवाब है आपको पता?
2: सर जी रिपीट करते हैं क्योंकि मैं नंबर ट्राई अगेन 247 दफा ट्राई अगेन हुआ है तो फिर जाके लगा।
0: अच्छा, बट साहब सवाल पूछा।
4: सवाल आपका है कि पाकिस्तान में केटू के बाद सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है?
0: आपका ना मैंने वॉल्यूम गेन इतना ज्यादा किया उसके बावजूद रेड को नहीं टच किया।
2: केटू के बाद?
0: हाँ जी।
2: मैं बताता हूँ,
0: एक दो तीन चार पांच, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ी पहाड़ी है। ग्लेशियर भी है
3: सर, क्या बात है।
0: ग्लेशियर भी यार पहाड़ी भी है
3: सर। आपने बिल्कुल गलत जवाब दिए।
0: छा गए,
3: छा गए सर आप।
2: उस जगह पर ड्यूटी करके आया ना, इस वजह से मैं अपने तसव्वुरात का इजहार कर।
0: अच्छा नहीं, ठीक है आपके लिए अगर है। आप फौजी भाई हैं हमारे?
2: मैं पाकिस्तान आर्मी।
0: माशाल्लाह, फिर आप जो कह रहे हैं ठीक है
3: सर, आप ठीक कह रहे हैं।
0: क्योंकि यार पिछले दिनों हमारा सर फखर से बुलंद किया आपने, यकीन करो वो मार्का हक में बहुत आप लोगों ने।
2: मैं अभी रिसेंटली कश्मीर से मार्का हक कर किया। मेरे पास 12 शर्ट्स पड़ी हुई है मेरी अपनी वो।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और खुश रहे आप लोगों की ये जिंदगी जो है इसी तरह से आबाद रहे, आपकी मौजूदगी से आपके घर वालों की आंखें इसी तरह ठंडी रहे।
2: शुक्रिया सर जी। एक अगर रिक्वेस्ट हो जाए तो को कलाम ही है एक गाना है, अगर दोनों में से कोई चला
0: जी बताइए बताइए।
2: एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा है, एक ये वाला या बस इश्क मोहब्बत
0: और अपना पन।
2: इश्क मोहब्बत या दूसरा ये है
0: बस इश्क मोहब्बत अपनापन।
2: हाँ जी।
0: जिंदगी हाथों से जा रही है, शाम से पहले रात आ रही है।
2: एग्जैक्टली। या वो कलाम चला दें। वीडियो तो उसकी देखने वाली नहीं है मगर वो कलाम जो है ना वो सबके लिए।
0: फिर वीडियो में देखा। अच्छा अच्छा।
2: मैं सरजी अल्हम्दुलिल्लाह 88.6 कर चुका हूँ मुल्तान स्टूडियो।
0: जबरदस्त है, जबरदस्त है। ये चलाते हैं, ये इश्क मोहब्बत चलाते हैं।
2: मेरा फेवरेट है सर जी।
0: और सर चलाते
2: हैं। जो मुर्खियां लगा रहे हैं जो सरगम लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ कि कोई भी नहीं लगा सकता, इवन के राहत फतेह अली खान भी नहीं लगा सकता।
0: सर लगा देते हैं सर, ठीक है लगा देते हैं। थैंक यू,
2: थैंक यू, बड़ा लव, थैंक, खुश रहिए बात।
0: थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, राहत फतेह अली खान एक बहुत बड़ा नाम है और हर किसी का जाहिर है अपनी पसंद होती है, अपनी पसंद के इजहार में इंसान ऐसी बातें कर जाता
3: है।
0: तो इट्स ऑल राइट जी। तो हम बात कर रहे थे ग्रीन कलर के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ पे बात कर रहे थे और सवाल भी आपसे पूछा हमने और इसके लिए आपने बताना है हमें। आप कॉल कर सकते हैं 04221111011। कॉल ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
5: आप कैसे हैं?
0: मैं वैसे का वैसे ही हूँ मैडम, आप बताएं आप कैसी हैं?
5: अल्लाह आपको तरक्की की तरफ लेके जाए। और
0: आमीन जी।
5: केटू की पहाड़ी के बाद नचागी की पहाड़ी आती है।
0: किसकी पहाड़ी?
5: चागी की पहाड़ी।
0: चागी की पहाड़ी,
3: वाह मैडम वाह। ये
0: लगता है आपको सोने से बहुत प्यार

0: हमारे पास ना इधर गड़ी शो वाली साइड पे एक जूस कॉर्नर था, चागी जूस कॉर्नर।
1: गलत बोल दिया।
0: जी जी फरी जी कैसी है? सब ठीक है। आपको कलर कौन सा पसंद है?
1: ग्रीन वाला।
0: ग्रीन वाला, बस देख लें आपके कलर पे बात कर।
1: सारा ना ग्रीन वाला कलर पसंद है।
0: आप एक दफा यहाँ पे चावल भी लाई थी पका के, सब्ज और सफेद। हाँ हाँ, जर्दा पका के लाई, सब्ज और सफेद, 14 अगस्त पे।
2: क्या बात है।
1: इंशाल्लाह फिर लेके
0: आऊंगी।
1: चूड़ियाँ
0: भी
2: थी, मैं चूड़ियाँ वो चूड़ियाँ डॉग्स के लिए आई थी।
1: इनके लिए बैग लेके आई थी, वो ना बांट दिए।
0: अच्छा, मेरे शो में कॉल करके चूड़ियों का जिक्र कर रही हूँ, मुझे भी शर्मिंदा ही कर दिया।
2: मैडम इस दफा आपने सादे का दुपट्टा भी ले गया।
1: गोटे वाला लेके आऊंगी अपनी।
0: गोटे वाला दुपट्टा, हाँ ठीक है। मैं ही पा पा के चेक कर रहा, मैं शीशे के नू तो ताड़ी आंदी नहीं भाई, तो मैं पा पा के खुश हो जाऊंगा। अच्छा कैसी लगेगी वो पहन के? ऐसी लगेगी, आयशा सुल्तान ने भी मैसेज किया, लिखे हुए को नहीं मानते हम, कॉल करें, कॉल करके बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा यहाँ पे मैसेज एक और है मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे तक आपकी आवाज पहुंच गई है। डॉक्स बस थोड़ा सा लेट पहुंचती है लेकिन पहुंच जाती है, मेहरबानी और आपका शुक्रिया। डॉक्स बिस्मा फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। फिर आगे लिख रही है, मैं भी ठीक हूँ, चले अच्छी बात है। वेलकम आप सबको, बहुत शुक्रिया। इंजॉय द इंटर्नशिप गाइज, विदाउट मी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ये भी ज्वाइन करना चाहती थी और यहाँ पे कॉल भी करती थी, इनके अब्बा ने इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा खुद नहीं आ रही, चले अब्बा से कहें वही आ जाएं। तो चले वो जब देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है, शायद वो आपको कह दें कि हाँ
2: फिर अलाउ कर दें। हाँ।
0: और कवल नाज बड़ी खुश हो रही है। अच्छा चूड़ियां वाली गल तो बड़े खुश हो रहे हो तुसी। और हमारे यहाँ पे पता कहते चूड़ियां पा लवा फिर गल कुछ और हो जाती है। मेरे अंदर की औरत जगाना चाह रहे हैं आप। उजार नवाज हमारे बड़े अच्छे से सियालकोट के आर्ज हैं, वो भी सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मैसेज किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी?
3: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से? बात कर रहा हूं।
0: कौन बोल रहे हैं?
3: ये आवाज आ रही है मेरी?
0: जी जी आ रही आ रही आ रही
3: जी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत प्यारा प्रोग्राम आपका।
0: सर बड़ी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है।
3: जी जी, इसलिए मैं आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, आजाद कश्मीर किस जगह से?
3: मैं जिला सुदूर की त्राड़कल से।
0: किधर से?
3: त्राड़कल, आजाद कश्मीर।
0: आजाद कश्मीर से। मौसम कैसा है वहाँ पे?
3: जी जी, आपकी सुन रहा था तो मैं आपको कॉल करूँ।
0: बड़ी मेहरबानी सर। मौसम कैसा है?
3: मौसम शुक्र अल्लाह का बहुत जबरदस्त है। मौसम
0: है ना वहाँ पे बड़ा अच्छा। आजकल तो बारिशें चल रही हैं।
3: जी बारिशें चल रही हैं।
0: बस मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने भी जाना है, मैं तो चाह रहा हूँ कि उन्हें मना करूँ, बारिशों के बाद जाएं कश्मीर में बारिशें है ना। सवाल पूछें आपसे।
3: मैंने तकरीबन आपका नंबर डायल किया, 212 नंबर से अभी जाके मेरा नंबर आ गया।
0: ओए होए सर, मेहरबानी और माजरत, आपको इतना इंतजार करना पड़ता है सर। आपसे सवाल पूछते हैं हम। हाँ जी बिलाल पूछो।
4: सवाल मेरा ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि पाकिस्तान में केटू के बाद जो बुलंद तरीन चोटी है उसका क्या नाम है?
3: नाम है सियाचिन ग्लेशियर।
4: क्या बात है
0: सियाचिन,
4: क्या बात है सर, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने।
0: वाह सियाचिन है, पक्की बात है?
3: इंशाल्लाह।
0: तो यार गूगल कर लिया,
2: लॉक कर ले।
0: चले चले, थैंक यू, आपका जवाब जो है वो दुरुस्त नहीं था। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी वजाहत कह रहे हैं, कल आपके खाने पीने की आप बातें कर रहे थे तो सियालकोट की तिक्का बोटी की बात भी करते। हाँ सियालकोट की तिक्का बोटी यार आप लोगों ने उस दिन खिलाई थी, बड़ा मजा आया था, मैच भी खेले, फिर जीत के आए थे ताड़े कोलों सी। ये भी याद है क्या?
2: चना
0: हेलो वालेकुम अस्सलाम
3: जनाब जनाब जनाब क्या हाल है? हरियत से
4: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, आप बताएं।
3: मैं आपकी सबासी बात कर रहा हूं। बराबर
0: शफात
3: आतिश अब्बासी।
0: आतिश अब्बासी ओके बताएं आतिश साहब कैसे हैं, मौसम कैसा है, बात करो।
3: अल्हम्दुलिल्लाह मौसम तो बस गर्म ही है और आप सुनाएं हर तरीके से हैं ठीक हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। आप बताएं किस शहर से बात कर रहे हैं?
3: ये बारको इस्लामाबाद से।
4: माशाल्लाह माशाल्लाह
0: बारको इस्लामाबाद से सवाल पूछो।
3: मोहसिन भाई को भी खुशामदीद और जो दूसरे दो भाई नए न्यू कमर आए हुए इनको भी खुशामदीद।
4: बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर सवाल मैं आपसे पूछने लगा, जरा गौर से सुनिएगा।
3: नया वाला सवाल पूछेंगे ना वो वाला पूछेंगे
4: हाँ। सर ये सरप्राइज है अभी पूछते हैं ना आपसे।
3: अच्छा तो यानी मैं सर समझा था वो पहले वाला जिसका लोग जवाब दे रहे हैं।
4: चलिए सर आप पहले वाले का जवाब दे दें।
3: नहीं नहीं आप दूसरा पूछे ना फिर आप इनाम नहीं देंगे तो
4: फायदा नहीं। सर इनाम आपको पूरा देंगे इनाम आपको अच्छा देंगे और पूरा देंगे। आपसे पहले वाला सवाल ये है कि पाकिस्तान में केटू के बाद जो बुलंद तरीन चोटी है उसका क्या नाम है?
3: सर उसका जवाब मैं दूंगा नांगा पर्वत।
4: हाँ। बहुत अच्छा है।
0: आपने 500 रुपया जीत लिया है। कहाँ पे वाकया?
3: नहीं मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए कि दूसरा ही पूछना चाहे तो वो पूछ।
0: नहीं नहीं नांगा पर नांगा पर्वत है किस जगह वाकया? हाँ। कहाँ पे है? जी
4: आपकी आवाज चली गई है।
0: ये आपकी आवाज नहीं जा रही है, आपके पैसे जा रहे हैं यकीन करें।
3: केपीके में है ना
2: यार?
0: केपीके में
4: सर ये आपने चैट जीपीटी खोला हुआ या गूगल खोला हुआ साथ?
0: चले बाहर आपने पहली बार
3: क्या
0: मेरे पास
2: मोबाइल है ही नहीं यार।
0: अच्छा फिर तो वेल आपने फोन नहीं बंद करना, लाइन पे रहना मोहसिन।
3: नहीं नहीं लाइन पे हूँ मैं।
0: हाँ आप लाइन पे रहिएगा। दोबारा अपना नाम बताना है आपने।
3: आतिश अब्बासी।
0: आतिश अब्बासी यार कितना
3: आतिफ
4: आतिफ।
0: अच्छा आतिफ मैं बड़ी देर से समझा यार आतिश।
4: आपके नाम के आपके पैसे मिलने लगे थे अभी।
0: ऑल राइट जी दैट वाज द फर्स्ट विनर। और यहाँ पे एक मैसेज मेरे सामने है, यहाँ पे शकील साहब ने मैसेज किया लाहौर से। और शकील अहमद साहब है, डॉक्टर सर क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर। सम टाइम सॉरी नॉट गिवन सेटिस्फेक्शन। अच्छा इट डज नॉट गिव सेटिस्फेक्शन। 4471 पे जितने लोग मैसेज करने वाले हैं क्या एफबी या अदर ऐप वालों से कमतर हैं? सो प्लीज टेल मी। अस्तग़फिरुल्लाह आपने बात ही लगा दी। अच्छा फाइन में मैसेज पढ़ देना पहले दूजे। अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि 4471 पे जब मैसेज कर रहे होते हैं ना लोग, मैं खुद से भी ये फील कर रहा होता हूँ कि वो यार 8 रुपए का है कैसे मैसेज पड़ता है। तो ये कमतर वाली बात नहीं है। और मैं बाकियों के भी पैगाम पढ़ता हूँ और इसके लिए मदद खाऊँ कि आपको अगर इस तरह की मेरी तरफ से फील गई है तो। अच्छा जी मेहर फातिमा सर मैंने जल टर्किश सॉन्ग है प्ले करेंगे, इट इज डेडिकेटेड टू यू। मैं पहले अकेला लगा के सुनूंगा, इसका मतलब समझूंगा फिर लगाऊंगा, पता लग गया मेरी बुराइयां ही नाना होती हैं।
4: सर आपकी बुराई नहीं कर सकता कोई।
0: अच्छा जी रमीजा रमजान है, सलाम किया। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? और कहती हैं फर्स्ट टाइम शो सुन रही हूँ, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, आपका हुस्न समात है। एनी कहती है योर वॉइस इज वेरी अल्कोहलिक।
4: क्या बात है
0: ओए हैवी हो गया। मैं अब सोच रहा हूँ अपनी आवाज को जो है ना कहीं पे कैद करके रिकॉर्ड करके बेचना शुरू कर दूं। कैन यू सेंड मी योर डिटेल्स? आई वांट टू सेल सम ऑफ माय कंटेंट टू यू। क्या ख्याल है एनी? अगला सवाल पूछना है। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं, एक यहाँ पे कलाम भी लगाएंगे लेकिन उससे पहले हम बढ़ते हैं कमजोरियों की तरफ, ग्रीन कलर की। बट साहब आई वांट यू टू टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग।
5: यस सर।
0: अच्छा जी तब्दीली से घबराते हैं लोग, चेंज। जल्दी अडॉप्ट करना पसंद नहीं करते।
5: सर बेसिकली अटैचमेंट होती है ना किसी चीज से,
0: तो जल्दी
5: बदल जाए तो फिर
0: कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर निकलना पसंद नहीं करते जल्दी।
5: सम टाइम्स अगर बात आपकी डेवलपमेंट पे हो तो फिर तो
0: माइक के पास है।
5: अगर बात आपकी डेवलपमेंट की हो या आगे बढ़ने की हो तो फिर सबसे आगे, अगर अटैचमेंट में है तो फिर नहीं।
0: और फिर अपनी जो जरूरी चीजें होते हैं सम टाइम वो भी जो कहा जाता है कि वो कुर्बान कर देते हैं यार, अच्छा ठीक है, जो नेसेसिटी होती है वो भी, अच्छा ठीक है तुम खुश हो जाओ,
5: एक क्लोज है तो फिर कुर्बान की जा सकती है।
0: और इसके अलावा ये भी इनके बारे में कहा जाता है कि सम टाइम दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को अगर तकलीफ भी पहुंचानी पड़े पहुंचा लेते हैं।
5: यस सर एग्जैक्टली।
0: और फिर जिद्दी भी हो जाते हैं कभी कभी।
5: सर जिद्दी उनके साथ जिनकी कदर करते हैं आप ज्यादा,
0: जिद्दी हो जाते हैं ना।
5: यस सर
0: जिद लगा लेते हैं ना कि बस फिर नहीं अब ऐसे तो ऐसे ही।
4: सर वो पोजेसिव हो जाते हैं या ओवर पोजेसिव हो जाते हैं?
0: जिद तो बहरहाल जिधर जाती है वो नेगेटिव सेंस पे जाती है। जिद का लफ्ज जो है वो है इसलिए कि आप किसी बात पे आप किसी मंतक किसी लॉजिक को कबूल नहीं कर रहे तो फिर नेगेटिव साइड पे चली जाती होती है।
4: सर बंदा जब किसी से मतलब बहुत पोजेसिव हो जाता है किसी के साथ तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइड पे वो जाना शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है।
0: उस सूरत में जाना शुरू होता है अगला बंदा आपकी पोजेसिवनेस से तंग होना शुरू हो और उसे पसंद ना हो। अदरवाइज तो पोजेसिवनेस अच्छी भी लगती है कुछ लोगों को, और कुछ कहते हैं नहीं कि मुझे इससे सफोकेशन हो रही है मेरा दम घुट रहा है।
4: एक लिमिट तक अच्छी लगती है ना, मतलब
0: ओवर पोजेसिव वो तो फिर टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है ना बंदा, वो तो फिर रेड फ्लैग फिर कह के कुड़ियां कहनी है चल पा जा निकाल कूल भी देती हैं ऐसे ही।
2: पर सबसे एक बात पूछूं?
0: हाँ पूछें पूछें।
2: आप मुझे ये बताएं कि आप डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं कि फौरन डिसीजन ले लेते हैं?
5: डिसीजन लेने के लिए टाइम तो लिया जाता है।
2: अच्छा यानी आप फौरन डिसीजन नहीं लेते?
5: नहीं।
0: ओके अच्छा एनी ने कमेंट किया है, कवल कह रही है ज्यादा नहीं ये हैवी नहीं कुछ ज्यादा ही हो गया ना, मैं खुश हो गया हूँ ना आई एम हैप्पी। अच्छा आपको क्या पसंद है इसके बारे में? आपको नेचर अट्रैक्ट करती है?
5: यस सर।
0: ट्रीज, बारिश,
5: यस,
0: ट्रैवल करना, नॉर्दर्न एरियाज में जाना, पीसफुल जगह पे रहना, ग्रीन लवर्स है ना
5: सर,
0: और घर वालों को टाइम देना,
5: बिल्कुल,
0: और सच्चे लोग, खुद चाहे झूठ बोल भी दें लेकिन लोग सच्चे
2: लोग सच्चे पसंद
0: है ना।
5: यस सर।
0: हाँ देख लो कह रहे हाँ मैं झूठ बोल लेता हूँ
2: मैंने नहीं सच बोला, मेरे सामने वाले सारे सच बोले।
0: और इमोशनल स्टेबिलिटी एंड अ सिंपल लाइफ।
5: यस सर।
0: ग्रीन कलर वालों को ये
5: पसंद है। क्यों उससे थोड़ा दूर?
0: हाँ क्यों उससे दूर है ना। और ना पसंद क्या आपको?
5: सर ना पसंद लोग जो
0: झूठ,
5: बिल्कुल,
0: बेवफाई, धोखा,
4: जेलेसी।
5: यस सर।
0: और फजूल किस्म की बहस, नहीं बिला वजह की बहस और चीखना चिल्लाना,
5: बिल्कुल। सर वो लोग नहीं पसंद जो अपने आप को हमेशा सबसे आगे रखते हैं और वो कहते हैं हम ही ठीक हैं आप जो है ना
0: और
5: नीचे रहिए।
0: बेमकसद का ड्रामा,
5: बिल्कुल,
0: वो भी नहीं पसंद। जैसे मेलो ड्रामा नहीं हो रहा होता अक्सर तुमने ये नहीं किया तुमने वो नहीं किया मैं ही करूं जब भी करूं तुम्हें को मसला है ना, बंदा सोचने लगता है कि चक्कर चल रहा
4: है।
0: अच्छा इसके बारे में ये भी कहा जाता है जो ग्रीन कलर होते हैं इन्हें जल्दी मोहब्बत नहीं होती।
5: यस सर।
0: है ना यार
5: अभी तक तो ये नहीं है जल्दी तो बहुत दूर
2: जल्दी होती तब तक हो जानी थी ना,
0: नहीं टेंशन वाली बात है ये तो बड़ी। और फिर ये भी कहा जाता है पहले ग्रीन कलर लवर्स जो होते हैं ये कोशिश करते हैं कि पहले ट्रस्ट बने अगले बंदे को तसल्ली से टटोल लें जान लें उसके बाद कहें कि हाँ
5: ट्रस्ट इसी तरह ही होता है कि जब आप किसी को अच्छे तरीके से जान पहचान लें तो
0: फिर उसके बाद आप
5: यस
0: उसके बाद फिर आप कहते हैं हाँ
4: वो पहले
0: जांच तो मैं तेरी तू मेरा
4: पहले वो कंफर्टेबल कर दें फिर उसके बाद अनकंफर्टेबल करें।
0: हाँ मजा फिर अनकंफर्टेबल होने में आता है ना।
5: यस
0: सर। रातों को जागना पड़े
5: वो एक ही फ्लो में फिर वो मजा नहीं आता ना।
0: हाँ मजा नहीं आता
5: अप डाउन
0: मतलब अच्छा पीसफुल आना जा रहा हो कभी आए दिन लड़ाई होनी चाहिए
5: टॉक्सिसिटी ऐड करनी चाहिए थोड़ी सी
0: थोड़ी थोड़ी सी होनी चाहिए
2: रोज की सेम
0: रूटीन दूसरे दिन ब्लॉक होना चाहिए बंदा कि मैं रात ही तो ठीक सोता था या मैन व्हाट इज रॉन्ग विद दैट आई डोंट सी इवन अ वर्ड मैं हर तरफ से ब्लॉक हूँ ये क्या मसला है ये क्या हुआ है। और आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ग्रीन कलर्स शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। और आप, आपको अगर जिन लोगों में आप अट्रैक्ट होते हैं ना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी, उन्हें कहा जाता है आप ब्लू कलर्स जिन लोगों को पसंद है, जिन्हें व्हाइट कलर पसंद है, ब्राउन पिंक एंड ब्लैक, इन लोगों की तरफ ग्रीन कलर्स, और ब्राउन कलर जिन लोगों को पसंद होता है ना उनकी पर्सनैलिटी के साथ ग्रीन कलर लवर्स जो होते हैं उनका मैच 96% होता होता, हाई लेवल मैचिंग होती है। और इसकी वजह क्या है, दोनों में जो स्टेबिलिटी होती है इमोशनल और फाइनेंशियल बहुत अच्छी बनती है इनकी, इन लोगों के कॉम्बिनेशन से, और इनके जो लव लाइफ है दैट इज आल्सो स्टेबल।
5: सर ये प्रैक्टिकल करके मैच बना
0: मुझे बताना है जरा, आपने जिधर भी दिला है पहले पूछना कलर कौन सा पसंद है। मैं ऐसे नहीं मानूंगा, पहले कलर बताओ।
2: घर वाले रिश्ता देखने जाए तो सबसे पहले डिमांड ये होनी चाहिए पहले कलर
0: पूछो। हमें पहले पूछना कलर कौन सा पसंद है, मेरे को दस देना, डोंट टेल मी कि कलर कौन सा पसंद है। अच्छा जी, अब वापस आके मैं मैसेजेस को शामिल करता हूँ आपके, और इसके बाद हम कंपैटिबिलिटी चार्ट की तरफ भी जाते हैं, एंड यहाँ पे चलाते हैं उनके अंदाजे करम, या वो जो साहब आए थे हमारे फौजी भाई उनका चला दें, अंदाजे करम पे हम शो एंड करेंगे, क्या ख्याल है?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: क्या ख्याल है बिलाल?
4: ठीक है सर, जैसे बेहतर लग रहा है आपको।
0: क्या था वो गाना, वो क्या कहा था उन्होंने, बस इश्क मोहब्बत
2: वो अपनापन,
0: बस इश्क मोहब्बत अपनापन, हमारे फौजी भाई हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है, फिर तो चलाना ही पड़ेगा ना जी,
4: सुननी पड़ेगी सर।
0: भाई हैं उन्होंने फखर से जो सर बुलंद किया, आई रिमेम्बर द ट्रांसमिशन हमने यहाँ से की और 48 आवर्स कंटीन्यूअसली, दैट वाज सो गुड। हे यू गो विद द सॉन्ग, अगर मेरे भाई सुनते हैं, वक्त हो चुका है 11:38, आज है जी 16 जुलाई 2026 का सिन एफ एम 101 रेडी पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और आज के दिन हम बात कर रहे हैं ग्रीन कलर पे, साइकोलॉजी ऑफ ग्रीन कलर, एक सवाल हमने पूछ लिया है और इसके बाद अभी सिलसिला जारी है, और जिन लोगों ने अभी सुनना शुरू किया यू कैन कम टू माय लाइव, आपने फेसबुक से सर्च करना है RJ Space DOX, वहाँ पे सर्च करेंगे एंड यू कैन हेल्प मी विद योर कमेंट्स, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टा टिकटॉक यूट्यूब फेसबुक, कभी मैं एक्टिव हो जाता हूँ और कभी इंतहाई इनएक्टिव, बहरहाल स्टिल आई एम अलाइव।

0: हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:45 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। वक्त हो चुका है 11:45। 16 जुलाई 2026 का सन है और आपका मेरे साथ होता है बुध जुमेरात की शब। हाँ जी, 10 से 12 बजे तक। और आज का हमने एक सवाल पूछा, अभी दूसरा सवाल जो है, मोहसिन आप दूसरा सवाल पूछें, फटाफट पूछें, फिर उसके बाद हम बैक टू बैक कॉल्स लेते हैं। और सारा अली सही कहती हैं बत्ती गई, नाम से तो लग रहा था आपको नहीं आती होगी पंजाबी। आपको कैसे पता चला बत्ती गई? हाँ जी, लाइट चली गई यहाँ पे जी।
1: पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है?
0: जी, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं? अब वो शहर बताइए और 1000 रुपया लेके उस शहर को सफ़र कर जाइए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मूड अच्छा कर देते हैं जब भी कभी आपको मैं सुनती हूँ। आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। जूनी फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मूड अच्छा होता है, यानी आपका मैसेज पढ़ के मैं भी बड़ा अच्छा अच्छा फील कर रहा हूँ। अदनूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से, डॉक्स आदाब तस्लीम, कैसे हैं हाशमी साहब? लकी बॉय रावलपिंडी से, हंसना सीखना पड़ता है, रोना तो बचपन ही से शुरू हो जाता है। ओए हाय हाय,
2: क्या बात
0: लगता है तुम्हारा भी रज के दिल टूटा हुआ। मेहर सर चले, अच्छा मैंने जेल, आप अकेले सुन लीजिएगा, जब्त का ओएसटी ही प्ले कर दें। फातिमा इतना तुम कहती हो, आज मैं लाज भी लगवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। और सारा जी कहती है बड़ी चंगी पंजाबी आती है मुझे तो। अच्छा अच्छा, बड़ी गल है, बड़ी गल है। सो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी द क्वेश्चन कि वो शहर बताएं जहां सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं। अब हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे थे। सो ग्रीन प्लस ब्राउन 96% है, और रीजन भी आपको बताया। ब्लू के साथ इसका अगर किया जाए कंपैटिबिलिटी 92% आती है, फॉर द रीजन कॉज बोथ आर बेटर एंड बेस्ट कम्युनिकेटर। इमोशनल सपोर्ट एक दूसरे को बड़ी अच्छी देते हैं, स्ट्रांग फ्रेंडशिप इनकी बनती है। और एक और इशू है, दोनों एक दूसरे के हवाले से बातें दिल में रख सकते हैं। फिर वाइट के साथ इनका 90 अबव कॉम्बिनेशन है, उसमें भी दोनों अमन पसंद नरम मिजाज किस्म के हैं, ठंडे ठंडे पंछी हैं, है ना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल हीलिंग के ऊपर बिलीव करते हैं, और एक्साइटमेंट इनके अंदर, लेकिन अमन पसंदी की वजह यह एक्साइटमेंट का लेवल कभी कभी कम हो जाता है। और पिंक के साथ जो है 88% है पिंक लवर्स के साथ ग्रीन लवर्स का। और पिंक क्योंकि ज्यादा वो होता है लविंग किस्म का, और ग्रीन जो होता है इसे ज़रा सिक्योर किस्म का लव पसंद होता है, तो केयरिंग किस्म का रिलेशनशिप इनका बड़ा रोमांटिक किस्म का है, लेकिन दोनों ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। ब्लैक के साथ अगर बात की जाए तो ब्लैक जो होता है वो ज़रा क्यूरियोसिटी एंड मिस्टीरियस एंड गहराई एंड डीप किस्म के थॉट रखने वाला, ग्रीन ज़रा और तरह का, इमोशनल ग्रोथ अच्छी है, लॉयल्टी दोनों की अच्छी बन सकती है, लेकिन जल्दी खुल के इजहार नहीं करते दोनों ही। ब्लैक तो बिल्कुल नहीं करेगा ना, ब्लैक तो बिल्कुल ही नहीं करता। पर्पल के साथ भी 82% है, येलो के साथ 79% है, और इसके अलावा ऑरेंज के साथ 74%, ग्रे के साथ 72%, रेड के साथ 56% है, रेड लवर्स के साथ। क्योंकि रेड बड़े आउटस्पोकन होते हैं और डोमिनेट करना पसंद करते हैं, तो इसलिए जो है ना ईगो का बड़ा मसला आ जाता है वहां पे।
2: फोकस अभी ब्राउन पे है सिर्फ।
0: अच्छा।
1: इस सारी गुफ्तगू के बाद भाई का फाइनल डिसीजन है।
0: हाँ,
2: लोग किया जाएगा। भाई कह रहा बस मिल जाए अभी। ब्राउन हो रेड हो बस मिल जाए।
0: नहीं, आपके पास देखे ना जी, ऑप्शन है ब्राउन है, ब्लू है, वाइट है, और पिंक है, ब्लैक भी है,
2: ब्लैक के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन।
0: हाँ हाँ, येलो भी है। अच्छा, दीज आर द कॉम्बिनेशंस जिसकी अगर हम बात करें ना, कि ये वो कॉम्बिनेशन जिसमें लाइकली कहा जाता है कि इसमें इस तरह से ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। लेकिन सम टाइम ये भी होता है कि आपको कोई और रंग पसंद है, कुछ चीजें आपकी डिफरेंट होती हैं। इसी तरह हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको 2-3 रंग ज्यादा ही वो उस तरह के पसंद हो।
1: जी जी, यस।
0: एक होता है कि जस्ट फोकस्ड ऑन अ कलर, सिंगल कलर, वो चीज और है। तो बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं। अच्छा जी, सवाल हमने पूछ लिया है तो आंसर तो नहीं अगली सदी तक मिल जाएगी। चले अभी कॉल लेते हैं 04221100102110001 पे आप कॉल कर सकते हैं। मैंने टेक द फर्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: हूज देयर, कौन है हमारे साथ?
3: मैं मुकद्दस अब्बासी बात कर रही हूँ, भारत इस्लामाबाद से।
0: कैसी हैं मुकद्दस आप?
3: मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। दिस इज योर फर्स्ट कॉल, आपकी पहली दफा कॉल मिली है।
3: मैंने आप जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उसका आंसर देने के लिए कॉल।
0: जी जी बताइए बताइए।
3: आपका क्वेश्चन था ना कि मतलब पाकिस्तान का सिटी ऐसा कौन सा जिसमें सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं?
0: जी,
3: तो माय अकॉर्डिंग मुजफ्फराबाद और मरी में सबसे ज्यादा बारिशें होती हैं।
0: हाँ जी सर बताएं हजूर क्या जवाब
1: है? जवाब है
0: मुजफ्फराबाद में भी
1: नहीं, मरी में।
0: मरी में होती
2: है ना, मुजफ्फराबाद या मरी फंस जाना था इन्होंने।
0: हाँ फंसा लेते
1: भी फंसा।
0: कैसे
2: सर अब तो बता दिया,
0: आप बता दिया ना यार, अब बता दिया, नहीं बनता है। मुकद्दस साहब लाइन पे रुके, इसके अलावा और कोई बात कहना चाहेंगी आप?
3: नहीं।
0: आपका कौन सा कलर फेवरेट है?
3: मेरा कलर ब्लैक फेवरेट है।
0: ओह मिस्टीरियस पर्सनालिटी, नॉट इजी टू हैंडल, खतरनाक।
3: इनोसेंट की बंदी हूँ, खतरनाक नहीं हूँ।
0: मैं भी यही बड़े, मैं दो दिन से कह रहा हूँ मैं इनोसेंट हूँ, इनोसेंट हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं, यकीन करें।
2: सर मेरा भी फेवरेट कलर ब्लैक है।
0: है ना? हाँ नहीं, आप भी बहुत इनोसेंट हो, हम सारे इनोसेंट हैं।
4: लड़के होते
0: इनोसेंट, लड़के जेन्युइन इनोसेंट है, बॉर्न इनोसेंट है ना मुकद्दस
3: जी? सर लड़के इनोसेंट है तो फिर तो लड़कियां तो फिर कुछ नहीं है, लड़कियां इनोसेंट होती हैं। लड़के कहाँ से, जेन जी में तो लड़के कहीं से इनोसेंट नहीं है।
2: मैं बहुत इनोसेंट हूँ।
0: दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। Anyways, जी
3: मेरा आंसर ठीक था?
0: बिल्कुल ठीक। लाइन पे रुके, लाइन पे रुके जी। ये दूसरा सवाल भी पूरा हुआ, 11:53 हो गए हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
5: सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सवालों के अच्छे जवाब दिए और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आप लोगों के साथ, थैंक यू।
0: बस कितनी ठंडी बातें करता है,
2: ठंडा बंदा है। भी ठंडा
0: है ना। कौन सी फेवरेट डिश है आपकी?
5: निहारी।
0: खुद बनाते हो बाहर से खाते हो?
5: बनाई खुद की पसंद है, जो खुद बनाई जाती है घर में।
0: क्या बात है लड़के, क्या बात है। अच्छा यहाँ पे मैसेजेस कुछ शामिल करते हैं जो हमारी पोस्ट पे आए हुए हैं, उन्हें हम शामिल करते हैं। एंड लेट मी सी द मैसेजेस, ताकि वो गिला फिर, बड़ा सख्त किस्म का मैसेज आया हुआ था मुझे, शकील साहब ने मैसेज करके काफी नाराजगी का इजहार किया। कवलनाज पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका यहाँ पे मैसेज आया। अमरजा चौधरी साहब ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। उस्मान बिन इमदाद आफ्टर लॉन्ग टाइम जद्दा से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। नांगा पर्वत बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा हमें वो सुन रही हैं राबिया शफक, कहती हैं माई फेवरेट कलर इज ग्रीन, आई लव इट। तो फिर आपने बताना जो बातें मैंने की हैं वो ठीक हैं। और इसके अलावा ग्रीन लवर अगर कोई चेक करना चाहते हैं, कोई कंपैटिबिलिटी, वैसे मैंने बताई है, अगर कोई कलर नहीं मेंशन किया तो मुझे बताइएगा। अच्छा जी यार, हम गिलानी ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। भाई जान सही लिखा करो नाम, मैं तुम्हें दस रहा जी।
1: कल को ब्लेम नहीं करना।
0: नजीर खोसो, थैंक यू वेरी मच जी, अलहमदुल्ला वल खेल है। कल भी मोमिन ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। जिनिया हकीम है, थैंक यू वेरी मच जी। सजाद आपका पड़ा वहाँ पे मैसेज। आयशा खान ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड बरकत खान जमाली साहब हैं, बहुत शुक्रिया जी। एम रजा चौधरी साहब शमसी लिस्नर क्लब की तरफ से सुनते हैं, थैंक यू। और इसके अलावा किसी का पैगाम रह तो नहीं गया जी, आपके नाम मैंने बोल दिए फिर बात जो तुझे सख्त मैसेज नहीं करना, कहीं मिले तो उसे ये कहना मैं तन्हा सावन बिता चुका हूं। कहीं मिले तो उसे ये कहना मैं तन्हा सावन बिता चुका हूं, मैं सारे अरमान जला चुका हूं। जो शोले भड़कते थे ख्वाहिशों के, वो आंसुओं से बुझा चुका हूं। कहीं मिले तो उसे ये कहना बगैर उसके उदास हूं मैं, बदलती रुत का कयास हूं मैं। बुझा दे अपनी मोहब्बतों से तू सुलगती सदियों की प्यास हूं मैं। कहीं मिले तो उसे ये कहना वो जज्बे मेरे कुचल गया है, वफा के सांचे में ढल गया है।
1: वाह।
0: न बदले मौसम भी इतनी जल्दी वो जितनी जल्दी बदल गया है। कहीं मिले तो उसे ये कहना मैं चाक दामन को सी रहा हूं, बहुत ही मुश्किल से जी रहा हूं।
1: आए हाय जबरदस्त।
0: दुनिया जो नफरत का जहर दिया, जो नफरत का जहर उसने, समझ के वो अमृत पी रहा हूं। कहीं मिले तो उसे ये कहना फसीले नफरत गिरा रहा हूं, गए दिनों को भुला रहा हूं। वो अपने वादों से फिर गया, मैं अपने वादों को निभा रहा हूं। कहीं मिले तो उसे ये कहना ये किस उलझन में जी रहा हूं, मैं अपने साये से डर रहा हूं। जो हो सके तो समेट ले वो मुझको, मैं तिनका बिखर रहा हूं। कहीं मिले तो उसे ये कहना ना दिल में कोई मलाल रखे, वो हमेशा अपना ख्याल रखे। वो अपने सारे गम मुझको दे दे, तमाम खुशियां वो संभाल रखे। कहीं मिले तो उसे ये कहना। क्या बात है सजाद,
1: जबरदस्त।
0: ओए होए, और क्या बात है मेरी, मैंने इतनी फ्लुएंसी में पढ़ दी।
2: बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा
0: पढ़ा। ओए होए
1: सर, ये सजाद की हमेशा से पोएट्री बहुत अच्छी है ना,
0: बहुत अच्छी। हाय हाय हाय
2: सर, मैं सुन के इमोशनल हो गया,
0: है ना। मुझे अक्सर मैसेज आते हैं आप शायरी पढ़ रहे होते हैं ना, ऐसे लग रहा होता है आप अपनी जो है ना अंदर से कहीं निकाल
2: सर, ये आपके दिल की आवाज ही है वैसे,
0: है ना। ऐसे मुझे भी कभी कभी लगता है, फिर मैं सोचता हूँ अच्छा वाकई मेरी
1: है।
0: थैंक यू वेरी मच सजाद, बहुत अच्छा। अदाए हशर जगाएं वो इतना दिलकश है, ख्याल हर्फ न पाएं वो इतना दिलकश है। सितारे तोड़ के लाने की क्या जरूरत है, सितारे दौड़ कर आएं वो इतना दिलकश है। आह वाह वाह वाह वाह, है तो सही वैसे, है ना, है ना दिलकश। आइए रहमान अनवर साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ?
4: सर मैंने पूछना ये था कि वो जो आंसर सही किया था सवाल का, और इनाम तो नहीं मिला।
0: अभी आ जाएगा सर। सर पंजाबी में वो कहते हैं तली पे सरों नहीं जमता, थोड़ा सा टाइम तो दे।
4: नहीं इनाम का मसला नहीं, आप जो विक्ट्री की जो खुशी होती है ना, वो
0: नहीं मिलेगी जी, इन्होंने हुने कर लो अपने वालों को। मुझे नाम अभी भेजे, अभी भेजे, कह रहे नहीं मुझे अभी खुशी सेलिब्रेट कर दी। आई वॉन्ट यू टू सेट हिम राइट नाउ। सर आ गया, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। थैंक यू।
1: इनकी कॉल मिल गई दोबारा
0: मिल गई, देख लो यार। लकी है, हुमा शेख ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक है। हमारा फयाज साहब सुन रही हैं प्रोग्राम को, पसंद किया, आई लाइक रेड कलर, थैंक यू वेरी मच जी। और इस्लाम गुजर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, आज लेट आए आप। मैं अक्सर लेट हो जाता हूँ। एनी कहती हैं, कैन यू टेल समथिंग अबाउट येलो कलर ट्रेट्स? रेयर कलर दो दैट इज फेवरेट बाय पीपल, सनफ्लावर कलर। हाँ डेफिनेटली आई विल टेल अबाउट दिस कलर, बट नॉट टुडे, बिकॉज़ आई वांट यू टू जॉइन माय नेक्स्ट प्रोग्राम। इसी बहाने आप अगले प्रोग्राम में तो आएंगे, येलो कलर पे बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। वैसे भी आज मैं येलो पे ही कहीं पे डिस्कशन भी कर रहा था, सो आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट येलो कलर, बट अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो Alright जी सर, इनोसेंट क्या होता है? मैंने भी नहीं पता इनोसेंट क्या होता है, बताओ ना यार इनोसेंट क्या होता है?
2: सर इनोसेंट वो होता है जिसे सब पता होता है लेकिन उसकी दुकान पे कुछ नहीं आता।
0: अच्छा वो इनोसेंट होता
2: है, दिल में रखता है सर वो, मुझे लगता
0: है वाकई तुम इनोसेंट नहीं हो। इनोसेंट तो वो होता है जिसे पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है,
1: पता ही ना चल रहा हो कि क्या चल रहा
2: है। अभी जो टाइम है सबको सब पता है,
0: है ना। हाँ लेकिन फिर भी एक हेजिटेशन के लेवल कुछ ना कुछ इस तरह का होता है आई बिलीव। सारा अली जही कहती हैं कि व्हाइट कलर पे हम ऑलरेडी बात तो कर चुके हैं, बट मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि साफ दिल के लोग होते हैं, ईमानदार और ترتیب انہیں زندگی میں پسند ہوتی ہے، ذمہ دار قسم کے رسپانسبل ہوتے ہیں، نرم مزاج اور تہذیب کے دائرے میں رہنے والے، پیشنس ان میں اچھی ہوتی ہے، اصول پسندی ہوتی ہے. اور آپ اکثر دیکھیں کہ یہ ہاسپٹل وغیرہ پروفیشنل بلڈنگس ہوتی ہیں، وہاں پہ وائٹ کلر کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کاز اٹ ریفلیکٹس پروفیشنلزم. ٹھیک ہے، باقی چیزیں پھر سے. تو ابھی یہاں پہ ہم اجازت لیں گے، ہمارے پاس آ چکے ہیں آج رحمان انور، اور وہ اگلا پروگرام کریں گے. آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے. ہیلو، السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ کون بات کر رہی ہیں؟ بسما اتنی دور سے بات کر رہی ہیں، آواز ہی نہیں آ رہی.
6: میں بسما بات کر رہی ہوں، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری کال لاسٹ پہ ہی کیوں ملتی ہے؟
0: شکر کریں مل جاتی ہے.
6: کیا
0: شکر کریں مل جاتی ہے.
6: ہاں کتنے سال سے
0: آپ کے نہ ہونے والے انٹرنی فیلوز بیٹھے ہیں میرے ساتھ. ان سے کوئی بات کرنا چاہیں گی آپ؟ جی
2: آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹھیک سے.
6: آپ لوگ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ کیا حال چال ہے آپ؟
2: ہم بالکل ٹھیک ہیں. آپ کیسی؟
6: یہ شور کیوں آ رہا ہے آپ کی طرف سے؟ میرے کان تباہ کر دے گا.
2: میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے اس شور کے لیے.
6: اچھا، اور آپ کی انٹرنشپ کیسی جا رہی ہے آپ دونوں بھائیوں کی؟
2: الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے. لیکن
0: یہ جملہ سننے سے پہلے اچھی جا رہی ہے
2: لیکن
0: اب بھی اچھی جا رہی ہوگی.
2: لیکن آپ کو مس کر رہے ہیں، آپ انٹرنشپ پہ نہیں ہیں.
6: اچھا، تو مطلب میں نے کچھ پوچھنا تھا ویسے انٹرنشپ کے حوالے سے، وہ اب بات ہی ذہن سے نکل گئی ہے. یہ مائک کی اتنی ڈینجرس آواز جو نکلی ہے وہ میرے دماغ پہ جا کے لگی ہے.
2: میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے کانوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا ہوگا.
6: اچھا
2: جی،
6: اور جو دوسرا بھائی ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟
0: دوسرا بھائی بتائے نا، دوسرا بھائی یہ کان میں لگائے، یہ اپنے پہنے ذرا. ہاں جی،
5: ہیلو
6: ہیلو،
0: پوچھیں کیسے ہیں آپ؟
5: الحمدللہ میں فٹ، آپ بتائیں.
6: میں بھی ٹھیک ہوں.
0: انٹرنشپ کیسے جا رہی ہے آپ کی؟
5: انٹرنشپ کا ایکسپیرینس تو ابھی تک تو بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا.
6: آپ کی آواز سے تو لگ نہیں رہا کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے.
5: نہیں
2: سر، یہ تو روسٹ کر رہی ہے.
0: ہاں اچھا، روسٹ کر رہی ہے، بنتا ہے بنتا ہے.
5: لرننگ پروسیس آئی تھنک زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، تو ود دا پیسیج آف ٹائم ہم اور سیکھ جائیں گے.
6: 5%
0: تک پہنچ گئے ہوں گے. ہاں اچھا ہے، بسمہ آپ ایسا کیا کرو جس دن کوئی انٹرن ہی آئے آپ ضرور کال کیا.
5: لیکن لسٹ یہاں پہ ہونا بھی ایک بلیسنگ ہے میرے خیال سے.
6: رحمان بھائی آئے تھے تب میں نے اتنا ٹرائی کیا تھا، تو آپ وہ نا اتنے اولڈ مطلب سنگر تھے، ان کو سنا رہے تھے نا، میرا دل کر رہا تھا یہ مطلب یہ جو نیو جیسے تھوڑے سے نیو ہیں جیسے آتی جس میں میں یہ وہ ان کو کیوں نہیں یہ گا رہے؟ تو آپ نے ایسے ایک دم سے بولا نا کہ آپ عاطف اسلم کو نہیں جانتی، عاطف اسلم کا کوئی گانا سنائے گا. میں نے کہا واہ، کیسے میری آواز پہنچی ہے وہاں تک؟ تو میں یہ کہہ رہی تھی کوئی عاطف اسلم کا سانگ.
0: ہمارے یہاں پہ نا دل کو مائک سے راہ ہوتی ہے، دل کو دل سے نہیں ہوتی.
6: ٹھیک ہے،
0: چلیں تھینک یو ویری مچ بسما. ابھی رحمان انور صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اور ابھی آگے پھر ان کا شو ہے، آپ یہیں پہ رکیے گا اور پھر رحمان بھائی کے شو کے اندر.
6: آپ نے ایک سانگ پلے کرنا ہے.
0: ابھی یہاں پہ جو انٹرن آئے ہیں نا آپ کے نہ ہونے والے انٹرن فیلوز، انہوں نے ایک ریکویسٹ کی ہے، وہ میں چلانے لگا.
6: کون سا؟
0: نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں، وہ بھی اپنے نہ ہوئے.
6: اچھا ایک دن میری بات سنیں، آپ جب یہ پلے کریں گے نا اس کے بعد وہ کیوں کرتے رہا وہ والا عاطف اسلم کا تیری دن میں
0: تیرے بن.
6: ہاں
0: اچھا ٹھیک ہے رحمان بھائی، پورا سانگ کا ہے پلے کرنا ہے. تیرے بن میں یوں کیسے جیا. اوکے اوکے، ڈان جی ڈان، تھینک یو ویری مچ بسما، تھینک یو ویری مچ فار یور کال جی، اللہ حافظ. अच्छा जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बॉयज, कैसा रहा?
2: सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया और बहुत एंजॉय किया आपको सुन के।
0: पक्की बात है,
2: बहुत मजा आया सर।
0: हाँ जी बाट साहब।
5: सर बहुत मजा आया।
0: कौन छुट्टी करोगे?
5: नहीं सर। सर बहुत मजा आया, बहुत।
2: सर वेडनेसडे को पेपर है, शायद कर लें।
0: चलो कोई नहीं, अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी करे, बेस्ट विशेस, लेकिन पहले इन्फॉर्म कर देना। ओवरऑल को बात को मैसेज देना चाहेंगे आप?
5: सर मैसेज ये है कि बात करने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए।
0: माइक के पास आके
1: बात करने से पहले माइक के पास आना जरूरी है।
0: और कुछ करो ना करो,
1: माइक के पास सुन रहा हूं।
5: कोई भी बात करने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए कि जब तीर कमान से निकल जाता है तो वो वापस नहीं जाता। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज किसी को क्या नुकसान देते हैं ये आप नहीं जानते, तो इसलिए एक बार पहले सोच लेना बेहतर है।
0: कहते हैं जो बोल जबानों निकल गया सो तीर कमानों निकल, निकल गया।
1: पहले तो लो फिर बोलो।
5: बिल्कुल।
0: मैं चार चफेरे उन्हें लभदा सी, वो दूर आसमानों निकल गया।
1: वाह,
0: आप क्या कहना चाहोगे बिलाल?
2: सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराहट बहुत अनमोल है।
0: सारे मुस्कुराना शुरू करो, कल बंदा बाहर निकले हर बंदे ये ऐसे बादशाह खिला के फिर कैसा लगेगा वैसे?
1: इतना
0: इतना थेरेपी है। अक्सर लोग मैं देखता हूँ वो पागलों की तरह हंसी जा रहे होते हैं ना, हंस ही रहे होते
1: हैं। और माशाल्लाह ट्रेनर भी हैं।
0: हाँ हाँ, हंसने की ट्रेनिंग।
2: अच्छा सर मैं बहुत कम हंसता हूँ।
0: नहीं वो शक्ल से लगता है, दोनों ही नहीं हंसते।
2: मैं जरा थोड़ा सा सीरियस हूँ लेकिन आपने मुझे हैप्पी मोड में डाल दिया। प्रेशर नहीं निकलते फिर।
0: नहीं कोई बात नहीं, निकलेंगे जी मोहसिन। एनीथिंग यू वांट टू से?
1: बहुत मजा आया इन दोनों के साथ आज शो करके,
0: है ना,
1: और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इनको, और उम्मीद है कि ये बहुत कुछ सीख रहे होंगे जो गलती से मैं नहीं आके सीख सका।
0: इंशाल्लाह जी,
1: इंशाल्लाह।
0: थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी रहमान अनवर साहब आएंगे, रहमान भाई के साथ भी बैठ के थोड़ी सी गपशप लगाऊंगा जी मैं। सी या, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और यस, उनके अंदाज़े करम है ज़रा रीमिक्स वाला ब्लेंड, कहते हैं तो ओरिजिनल लगा देते हैं, ठीक है यही ना? अच्छा है तो आवाज़ वही ना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101
1: FM 101 The sound of new millennium.

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: FM 101 The sound of new millennium.
2: सुरर संगीत सा
1: FM 101 The sound of new millennium.

अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो कि खुदा तुम्हारे साथ है, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

शहरों के आगे। संगे मरमर से आरास्ता फर्श पर पैर रखते हुए, आह भरते हुए और दरख्तों को मन्नत के धागों से आजाद करते हुए, हम मिलेंगे कहीं नार मेंडी के साहिल पे आते हुए। अपने गुमगश्ता रस्तों के खाक के सफर से अटी वर्दियों के निशान देखकर, मराकिश से पलटे हुए एक जर्नैल की आखिरी बात पर मुस्कुराते हुए, एक जहां जंग की चोट खाते हुए, हम मिलेंगे कहीं रूस की दास्तानों की झूठी कहानी पे आंखों में हैरत सजाए हुए, शाम लबनान बेरूत की नरगसी चश्म होरों के आमद के नौहों पे हंसते हुए, खूनी कजियों से मफलूज अल्बानिया के पहाड़ी इलाकों में मेहमान बनकर मिलेंगे। हम मिलेंगे कहीं एक मुर्दा जमाने की खुश रंग तहजीब में जज्ब होने के इम्कान में, एक पुराने इमारत के पहलू में उजड़े हुए लॉन में, और अपने असीरों की राह देखते पांच सदियों से वीरान जिंदान में, हम मिलेंगे। हम मिलेंगे तमन्नाओं की छतरियों के तले, ख्वाहिशों की हवाओं के बेबाक बोसों से छलनी बदन सौंपने के लिए रास्तों को। हम मिलेंगे जमी से नमूदार होते हुए, आठवें बर्रे आजम में उड़ते हुए कालीन पर। हम मिलेंगे किसी बार में अपनी बकाया उम्र के पाए माली के जाम हाथ में लेंगे, और एक ही घोंट में हम ये सयाल अंदर उतारेंगे और होश आने तलक गीत गाएंगे, बचपन के किस्से सुनाता हुआ गीत जो आज भी हमको अजबर है। बेड़ी भी बेड़ी तो ठिल दी ते पई है, पते पार क्या है, पते पार क्या है। बेड़ी भी बेड़ी तो खेल दी ते पई है, पते पार क्या है, पते पार क्या है। हम मिलेंगे बाग में गांव में धूप में छाओं में, रेत में दश्त में शहर में मस्जिदों में, कलीसों में मंदिर में मेहराब में चर्च में, मूसला धार बारिश में बाजार में ख्वाब में आग में, गहरे पानी में गलियों में जंगल में और आसमानों में, कौनों मकां से परे गैर आबाद सैयाराए आरजू में, सदियों से खाली पड़ी बेंच पर जहां मौत भी हमसे दस्तो गिरेबा होगी तो बस एक दो दिन की मेहमान होगी।

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन
1: FM 101 The sound of new millennium. सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101
2: लाहौर और इसके गिर्द नवा में सुने जाने वाली आवाज का नाम रहमान अनवर। ये प्रोग्राम है अधूरी बातें और आपसे मुलाकात हुआ करती है एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे मिडनाइट टिल 2 AM हर बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। मेरे साथ एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद है, मेरे साथ एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनका अल्फाज के ऊपर बहुत जबरदस्त गिरफ्त है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जब अल्फाज अपनी जबान से अदा करने के बारे में सोचते हैं तो अल्फाज अपने आप को मतलब कि प्राउडी प्राउडी फील करते हैं। आरजे डॉक्स हमारे साथ हैं। डॉक्स कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ये इत्तफाक है कि आपका और मेरा साथ ये के बाद दीगरे 2 दिन मुसलसल।
2: यस यस यस,
3: वरना ऐसे होता नहीं यार। काफ़ी वक्त गुजर जाता है, आपका चेहरा देखे, आपके साथ बैठे गुफ्तगू किए, आपकी मुस्कुराहट देखे, आपको छेड़े हुए, आपको तंग किए हुए या आपकी किसी संजीदा सी बात का गैर संजीदा जवाब दिए हुए
2: है। अच्छा, बाज़ औक़ात मोहब्बत का ये वाला जो पहलू है मुझे बहुत प्यारा लगता है कि जब आप किसी इंसान से इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, उसको अपना समझकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके साथ सलूक करते हैं और फिर आपके दिल में ये भी ख्याल होता है कि वो बुरा मान नहीं सकता। मतलब ऐसे लोग ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के ख्यालात मेरे दिल में भी पैदा होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अखलाक के मुख्तलिफ दायरों को मद्देनज़र रखते हुए बात करूँ और कोई भी बात करूं तो मुझे कोई कभी झिझक महसूस नहीं हुई, कभी ऐसा फील नहीं हुआ और ऐसा एहसास बहुत कम मिलता है। बहरहाल नाइट थेरेपी जो आपने प्रोग्राम किया वो तो फिर अपनी मिसाल आप होता है। अभी यहाँ से ना अधूरे सिलसिलों का आगाज़ है, अधूरी बातें जो मुकम्मल बातों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अधूरी बातें मुकम्मल मुलाकात से भी ज्यादा खूबसूरत होती हैं।
3: मुकम्मल मुलाकातें अधूरी बातें, हाँ, अगर आप फितरी तकाजे को देखें, जो कि नॉर्मली होता यह है कि आपके अंदर जो चीज़ रह जाती है वो हमेशा नामुकम्मल होती है, इसलिए रह जाती है। और जिस तरह आपका मिजाज है और आपको चीज़ें पसंद हैं कि वो चीज़ जो मुकम्मल ना हो और आप इंटेंशनली चीज़ें मुकम्मल नहीं करते क्योंकि आप चाहते हैं कि वो अंदर कहीं ना कहीं बाकी रह जाए। और फिर एक और चीज़ मैंने महसूस की है आपकी ज़ात के बारे में कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स मुकम्मल दायरा इख्तियार में आ जाए या कोई शय, कुछ भी, एनीथिंग जो आपको लगे कि हाँ आप मुकम्मल दस्तरस में है या मुकम्मल समझ में है और हासिल भी आप कर लें, तो कहीं ना कहीं उससे फिर आपका तसादुम होता है और आप उससे फिर दूर हो जाते हैं।
2: अच्छा, ऐसी ऑब्जर्वेशन, ऐसा एहसास कि जो 100% के ऊपर हावी हो, मतलब कि 100% जो मेरी शख्सियत है, जो मेरा एहसास है, वो आज अपने अल्फाज में आपने तकरीबन 3 से 4 जुमलों के अंदर बयान कर दिया। मेरे लिए अगर कोई चीज़ मेरी मुकम्मल दस्तरस में आ जाए तो मेरे लिए वो बेमानी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसके साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। लेकिन पता नहीं मिजाज के अंदर ये बोरियत कहाँ से आ जाती है, मिजाज के अंदर ये उससे दूर होना, उससे कम मिलना, जबकि उसकी पूरी ज़रूरत हो, फिर भी उसकी आदत हो कि वो मोहब्बत देता है, वो प्यार देता है, वो एहसास देता है, वो मेरी मर्ज़ी के बग़ैर, मैं अगर उसे ना भी ख्याल करूं, मैं अगर उसका ना भी एहसास करूं, वो तब भी वो अता करता है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या बात है कि बोरियत और उससे दूर होने का ख्याल जहन में आ जाता है। इसलिए मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहा करता हूं कि मुकम्मल कभी भी किसी के ऊपर आया नहीं होना चाहिए।
3: ठीक कहते हैं।
2: अगर वो आपकी बीवी ही क्यों ना है, अगर वो आपका शौहर ही क्यों ना है, अगर वो आपके वालिद ही क्यों ना है, आपकी वालिदा क्यों ना है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में इखलाकी दायरों को मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सही और गलत, अगर आपको इसमें फ़ैसला करना आ गया है, अगर इसमें फ़ैसला करना आता है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर बचा कर रखनी चाहिए। सब चीज़ें, सब पत्ते, सब एहसासात, अपनी शख्सियत के तमाम अंसर, अपनी शख्सियत के तमाम पहलू उसके सामने नहीं निछावर करने चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मुकम्मल मुकम्मल उसके सामने आया हो जाना चाहिए?
3: मैं कहता हूं, आपकी अक्सर बातें सुन के, आपके सवालात सुनने के बाद मेरे रहन में एक सवाल उभरता है कि अगर ये इतना लंबा सवाल किसी पेपर में आया होता तो मैंने लिखना था जवाब के लिए सवाल ही काफी है।
2: आप लोग देख रहे हैं कि मैं जब सीरियस होता हूं, मैं जब संजीदा होता हूं, फिर ये कहते हैं कि संजीदा गुफ्तगू नहीं करता। अच्छा, वैसे मुझे तारीफ सी भी महसूस हुई है थोड़ी सी ना, नहीं मुझे हुई है थोड़ी सी, पर क्या तारीफ के अंदर बेइज्जती का अंसर शामिल है या फिर वाकई में आपने तारीफ कर दी है कि यार कभी कभी सवालात ऐसे होते हैं कि जवाब भी वो खुद ही होते हैं।
3: हाँ नहीं, अच्छा है, आपने खुद ही बात की।
2: अच्छा, मैं मतलब खुद ही बात करके खुद ही मान लूं कि
3: आप खुद बात करते हैं।
2: मुझे कुल्फी चाहिए। हाँ, कि नदी चाहिए
3: ना। आप अब क्या करते हैं, आप सवाल करते हैं, उसमें जवाब देने के बाद फिर वापस वो पहले जुमले पे आके कहते हैं अब आप बताएं। है ना, अब आप बताएं। जब आप ये कहते हैं ना, फिर मुझे होता है कि अच्छा फिर मैंने ये बात नहीं करनी, मुझे कुछ और बात कर दी है। अब मैं समझ गया हूँ, उसने मुझे डायरेक्टली कहा है गाल सुन, ऐ जवाब ना दई, ऐ जवाब मैं तेनू पहले सवाल दे नाल दे रहा। I have to tell you something different and I really want something deeper and different, more psychological, more philosophical.
2: Yes, yes, yes.
3: तो मुझे ये फील आती है। फिर जब मैं फलसफा बोलने लगता हूँ तो मुझे फिर अक्सर पैगाम आने लगते हैं कि आप इस तरह की बातें करते हैं, आधी बाउंसर हो जाते हैं, आधे कुछ ऐसे हो जाते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत मजे के होते हैं। और आप जो फलसफा बयान करते हैं, दरअसल मसला पता क्या है, वो इतना हकीकत के करीब तरीन होता है कि इंसान अगर सोचने के काबिल हो, अगर सोचने समझने की सलाहियत उसके अंदर मौजूद हो और वक्त भी हो उसके पास, तो उसे बहुत मज़ा आता है। वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कयास आरायाँ करता है, अपने आप के साथ बातें भी करता है।
3: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि आपने सवाल किया, जवाब दे के फिर सवाल किया, और उसके बाद एक गुफ्तगू हमने थोड़ी सी ऑफ ट्रैक की।
2: जी जी।
3: और ऑफ ट्रैक कर देने के बाद अब मैं फिर चाहूंगा कि आप सवाल दोहराएं।
2: सवाल मेरे ज़हन में बहुत
3: सवाल मैंने क्या किया था,
2: सवाल मेरे ज़हन में ना बहुत
3: आया नहीं होना चाहिए। मेन उसका की पॉइंट ये था।
2: यस यस। क्या अपने आप को मुकम्मल तौर पर
3: किसी के सामने जाहिर कर देना चाहिए,
2: जाहिर कर देना चाहिए?
3: सर, इसमें मेरी हमेशा से जहां पे बैठूं
2: जी
3: और अकेला भी बैठूं तो अक्सर मैं बैठता हूं, जो कि टाइम मिलता मैं लेट के या बैठ के या लॉन में चला जाऊंगा। रात को मेरे घर के अंदर एक मेरा फेवरेट स्पॉट है, रात को जाऊंगा वहां पे बैठ जाता हूं अक्सर ही। आई डू थिंक अबाउट सो मैनी थिंग्स। तो एक तो ये है कि हर चीज, हर मौजू, हर लफ्ज कम से कम दो मानी और दो एंगल्स रखता।
2: यस, बिल्कुल ऐसे ही।
3: आप कुछ कहने लगे थे या
2: मैं एक बात सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत आपने ये जो आगाज में जुमला दोहराया ना कि मेरा एक फेवरेट स्पॉट है और मैं वहां पे बैठकर सोचता हूं, क्या वाकई में आप ऐसा करते हैं कि आप मोबाइल, आप लाइट्स को डिम करके या ऑफ करके आप सोए नहीं, लेकिन आंखें चाहे बंद कर लें, चाहे अंधेरे के अंदर आप आंखों को खोल कर भी बहुत सारे ख्यालात सोचें, ऐसा होता है आपके साथ?
3: सर मैं मंजर कशी करता हूँ ना इसकी। मेरे घर का कारपोर्च है और एक दरवाजा है, दरवाजा ब्राउन कलर का है और ब्राउन कलर पे आज वैसे भी गुफ्तगु चलती रही है हमारी, और साथ ही फर्श है जो कि पुराने तामीर की तर्ज का है और जिसमें चिप्स है ग्रे कलर का और वो शीशे के दरमियान में डिवीजन है, वो फर्श है हमारे लॉन तक जाता है, और एक साइड पे हमने एक शेड लगाया है बैठने के लिए, उस पे एक पंखा है और उसके नीचे सोफे हैं, और सोफे रात के वक्त उस जगह पर अंधेरा होता है, पंखा चलता है, और फिर सामने दूर बाहर जो हमारी लेन है उसकी वो जो लाइट है, वो जो कुमकुमा लगा है, जो बल्ब है लगा बल्ब हुआ है। स्ट्रीट लाइट उसकी रोशनी आती है और दरख्त उसके दरमियान हायल होते हैं, दरख्तों के पत्तों से छंड की रोशनी अंदर आती है, अंधेरा और रोशनी,
2: मलकजी रोशनी,
3: अंधेरा और रोशनी मेरे से तकरीबन कोई 30-40 फुट के फासले पे एक दूसरे से टकराते हैं, और कुछ हद तक रोशनी अंधेरे पे गालिब रहती है और उसके बाद अंधेरा बहरहाल रोशनी पे गालिब आता
2: है, आ जाता है।
3: तो इस तरह का मंजर है, और उससे अगर थोड़ा सा ऊपर मैं सर उठा के देखूं तो चांद अक्सर सामने नजर आता है, और अगर हवा चलती हो वहां पे तो दरख्तों के पत्ते हिलते हैं, पत्तों को देखता हूँ हिलते हुए,
2: और उनकी आवाज है,
3: और उनकी हल्की हल्की सी आवाज है, और अगर पतझड़ का मौसम हो तो पत्ते गिरते हैं,
2: उनकी चरचराहट की आवाज,
3: और उनकी चरचराहट की आवाज आती है, और अगर सर्दियों का मौसम हो तो सर्दी की कभी कभी लहर भी दौड़ जाती है जिस्म में, और इस जगह पर बैठ के जहाँ ना मोबाइल की रोशनी है और ना ही सूरज की रोशनी है, खामोशी, मैं अकेला और ये मंजर और जहन में चलने वाले बहुत सारे ख्यालात, ये
2: माहौल होता,
3: ये माहौल मजबूर करता है सोचने के लिए,
2: वाह वाह वाह वाह,
3: और फिर बहुत सारे ख्यालात जहन में चलते हैं, और जहाँ पे अक्सर मैं अपनी जात से शुरू होता हूँ और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी जात को सामने रखूँ, तो जो आपने बात की कि किसी के सामने अपने आप को खोल देना, तो वहाँ पे बैठ के कभी मैं भी ये सोचा करता था शायद मैं ही अपनी जात को मुकम्मल तौर पे आयां कर देता हूँ, और फिर सोचता था ये मेरा मसला नहीं है, ये सबका मसला है, ये आफाकी मसला है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, या एक फितरी सा फिनोमेना है जो सारों को लाहक रहता है, कि हर शख्स को लगता है कि उसने अपना आप बिल्कुल मुकम्मल किसी के सामने खोल के रख दिया, जस्ट लाइक एन ओपन बुक, अ नेकेड फैक्ट दैट यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं सफ़े उल्टे पलटे जिस तरह से दिल चाहे, और ये चीज़ मैंने वहाँ पे भी देखी जहाँ दो लोग लड़ते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, वहाँ पर भी दोनों ये कहते हैं कि मेरे साथ ये इसलिए हुआ कि मैंने मुकम्मल दस्तरस इसको दी थी, अपना आप खोल के इसके सामने रखा,
2: तभी मेरे साथ ये हुआ,
3: तब मेरे साथ ये हुआ
2: कि मेरा दिल दुखा,
3: हाँ, तो दोनों ये कहते हैं, तो वहां पे फिर मैं जाके रुकता हूं, ये पहला मेरा कदम होता है,
2: वाह वाह,
3: कि अगर दोनों ने एक दूसरे के सामने अपना आप खोल के रख दिया तो फिर वजह तजाद क्या थी, कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन, तो फिर उससे आगे जाके गहराई में जाना पड़ता है, कहीं सोचना पड़ता है कि क्या ये मुमकिनात में से है मैं किसी के सामने अपना आप खोल के रख दूं, मुमकिन नहीं है। I've been telling so many times, I've told so many people around me over the mic, मुख्तलिफ जगह पे बताता आया हूँ कि हमेशा याद रखें, दुनिया में कहीं चले जाएं, आप अपनी जात को चार हिस्सों में बांटेंगे। एक वो हिस्सा कि जो लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं अपने बारे में, मिसाल के तौर पे आपको भूख लगती है सारे को पता है इंसान है भूख लगती है, आपको गुस्सा आता है सारे को पता है इसको गुस्सा आता है, और एक वो हिस्सा जो महज आप जानते हैं, आपके इर्द गिर्द वाला कोई आपके जितना मर्जी करीब हो वो नहीं जान पाता मुकम्मल तौर पे। इसकी मिसाल ये है कि आपका ये ख्याल का आना कि शायद मेरे साथ ऐसे हुआ इस वजह से कि मैं मुकम्मल तौर पे इसको दस्तयाब रहा, फिर अपने ही ख्यालों से खुद ही उलझ के फिर कहना नहीं यहाँ पे ये नहीं ये वजह होगी इस वजह से ये गलती हुई, फिर उन्हीं ख्यालों का आपके अंदर ही दफन हो जाना रह जाना, इस तरह के बेशुमार चीज़ें हैं दैट यू नो अबाउट योरसेल्फ, ये सिर्फ आप जानते हैं। और एक वो हिस्सा जो लोग आपके बारे में परसीव करते हैं लेकिन आपको वो नहीं पता होता, वो जब कभी पता चले तो यू जस्ट गेट शॉक्ड कि अच्छा मेरे बारे में ये सोचता है, वो हिस्सा है जिस तरह आप अपने ख्यालात को दबाते हैं लोग भी आपके बारे में अपने ख्यालात दबाते हैं। और चौथा वो हिस्सा है जो डिस्कवर ना आप करते हैं ना लोग कर पाते हैं, उसको डिस्कवर करने के लिए आपको अपने आप को वक्त देना पड़ता है, वहां से एक्चुअली तब्दीली का आगाज होता है। और ये जो बड़ी जबान ज़दे आम बात है कि जी मैंने यहां कर दिया तो ये हुआ, ये है सती सी बात। अगर आप डीप डाउन जाएंगे तो मुमकिनात में से नहीं कि कोई एक फर्द किसी दूसरे के मुकम्मल रवैये को जांच ले, अगर ये मुमकिन हो तो अक्सर ही आप इफ की कंडीशन लगाते हैं और ये जुमला भी कहते हैं नहीं मुझे यकीन है वो ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे दूसरी कंडीशन मौजूद होती है।
2: yes.
3: बिल्कुल कलाम इलाही ने भी यही बातें इस तरह की बहुत सारी की, उसमें खालिक के कायनात ने भी ये कहा कि अगर तुम ये करो तो ये, अगर तुम ये करो और ये, मगर तुम ऐसे नहीं करोगे। क्योंकि इंसान वो है जो किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकता है।
2: wow.
3: दिल के हाथों मजबूर होना, किसी के सामने चूर होना और बात है, चाहते हुए आप खुद नहीं करते, आप चाहते हैं कि मैं ना करूं वो मुझे कहे तो मैं करूं, और फिर आप अपना दिल भी दुखाते हैं और उसको भी तकलीफ पहुंचाते हैं, चाहे तो बदल लें, जहां पे रोकना है वहीं पे रोक दें इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए, और अगर बिगड़ भी गया तो मसला पूरी दुनिया में महज जज्बात के मजरूह होने का, एक इमोशनल डैमेज का इशू है और तो कुछ भी नहीं है।
2: क्या
3: मैं चाहूं तो मैं किसी की छोटी सी बात को इग्नोर कर दूं, और मैं चाहूं तो बात का बतंगड़ बना लूं, मैं चाहूं तो कहूं कि अब ये मेरी अना का मसला है, मेरी यहां पर बेइज्जती हुई, मैं चाहूं तो ये कह के इग्नोर कर दूं कि ये जानते नहीं, ये पहचानता नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो ये मुमकिन हाथ में से नहीं कि आप यहां करें। आपके आदत का पता चल जाना इज समथिंग एल्स, क्योंकि वो रूटीन के मैटर्स बन जाते हैं। जो आपके साथ रहे वो आपकी आदत को समझ जरूर जाता है, लेकिन कुली तौर पर नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू कंप्लीटली एक्चुअली हु यू आर। You are a very perfect combination of everything.
2: Everything, yes.
3: क्योंकि जेनेटिकली साइंस आज ये कहती है कि जिस ब्लड लाइन से आप हैं आपके जीन्स उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेके आप तक आते हैं।
2: yes.
3: तो जिन अजदाद को मैं नहीं जानता खुद से उनको कोई दूसरा क्या जानेगा, अक्सर इजहार होता है। कभी बढ़ते हुए उम्र के साथ साथ आपके चेहरे के खदोखाल में, कभी आपकी आदतों में, कभी आपकी
2: आवाज
3: में, रंगत में, कभी आवाज में, कभी चेहरे में, कभी जिस्म की बनावट में,
2: बिल्कुल।
3: सो नोबडी नोस, मैं खुद ही आशना नहीं। इसीलिए कहा कि खुद को जान लेने का मतलब यह है कि आपने मारिफत हासिल कर ली अपने खालिक की
2: अपने तख्लीककार से रूबरू हो गए, कहीं ना कहीं उसकी कुछ खासियतें आपके सामने आया हो गई।
3: नफ्सहू आपका मेरा फकद अरफ रब्बहू, उसने अपने खालिक से मारिफत हासिल कर ली। तो तब ये जब मैं जानूं, जब तक मैं बाहर को देखता रहूंगा मसला जूं का तू रहेगा। जब मैं अपनी निगाह अपनी जात पे लौटाऊंगा, वापस आऊंगा, खुद में देखूंगा, मामला ढूंढूंगा, क्योंकि जुमला क्या होता है, मुझे बुरा लगा या मुझे अच्छा लगा? भाई मुझे लगा ना,
2: हाँ
3: मुझे बुरा लगा ना, मुझे तकलीफ हुई, मेरी अना जाग गई, मेरी अना के बुतों को तकलीफ हुई। मसला जुमले हमारे अपने हमें दिन में कई दफा बताते हैं कि ये प्रॉब्लम बाहर नहीं, ये हमारे अपने अंदर है। मुझे लग रहा है, मेरी बेइज्जती हुई, मेरी मोहब्बत जाग गई, मुझे ये हुआ, मैं खुश हुआ, मैं गम।
2: Means that we have something inside ourselves.
3: अंदर कहीं है। इल्जाम दूसरे को देने के बजाय मुझे चाहिए कि मैं खुद को देखूं, जमाने में गलती कीती जा रही है।
2: यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बदलते हुए मौसम की तरह इंसान की जो तरजीहात है वो गुजरते हुए वक्त के साथ बदलती रहती हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर आप किसी को जितना आप समझते हैं आप बता चुके हैं? बहुत मुश्किल काम है। और ये पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी एक जगह पे स्टक हो गए हैं और आप अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लेकर नहीं आ रहे, इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे, चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, आप रुके हुए हैं। दरअसल वक्त नहीं रुका और आपको ऐसा लगता है कि आपने सब कुछ बता दिया, आपने सब कुछ हयां कर दिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहरहाल 1:04 समय जो है ना इस प्रोग्राम में वो पर लगाकर उड़ता है और बिल्कुल एहसास नहीं होता कि वक्त कहाँ गया। वक्त बिल्कुल बहुत तेज़ी से बीतता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आया था और अभी 1 घंटा बीत गया। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। हमारे और आपके दरमियान रबते के लिए कुछ तरीक़ेकार हैं, वो आपको बता दूं। सबसे पहले मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज दीजिए 4471 4471। और दूसरा तरीक़ेकार, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी लाइव कॉल्स मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाने वाला हूं। और यहां पे जो लाइट ब्लिंक होने लगी है उससे ये एहसास मिल रहा है कि हमें सुनने वाले हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं। 0421100101 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर्स, 0421100101। और सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101 लाहौर। और प्रोग्राम में डॉक्स कॉल्स शामिल करें।
3: यस करें।
2: टेलीफोन लाइन पे पहली कॉल, ये शुरुआत में ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जब भी लोग मैं कॉल रिसीव करने की कोशिश करता हूं तो आगे से टू की एक लंबी सी आवाज मुझे सुनाई देती है?
3: वो अगर, तू तू तू की आवाज है।
2: अच्छा तू
3: नहीं तू।
2: अस्सलाम वालेकुम जी।
4: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: जी कौन बात कर रहे हैं जी?
4: रहमान भाई, मैं लाहौर शादबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूं।
2: जी नवीद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं?
4: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। दम को इश्तिहार दम को।
2: खुद को किसी अपने बहुत ही प्यारे के सामने मुकम्मल तौर पर आयां करने के बारे में आपका क्या ख्याल है कि कर देना चाहिए या नहीं, सब कुछ उसको बता देना चाहिए या नहीं?
4: सर देखें, मैं तो ये सोचता हूँ और ये मेरा नजरिया, ये मेरा ब्रेन भी
2: है,
4: लेकिन कुछ किसी को बता के भी कल को इंसान जो है ना लोगों के सामने जो तंग होता है।
2: अच्छा। यानी कि आप अपनी कमजोरी समझते हैं कि मैंने जो बात बता दी है वो मेरी कमजोरी बन गई है?
4: अगर सर देखें, अगर एक को बताएंगे तो एक से दो के पास जाएगी, दो के पास चार से जाएगी, अगर एक वक्त ऐसा आएगा फिर इंसान बैठ कर खुद ही सोचेगा कि यार मैं ये ना करता या ना बताता तो अच्छा होना चाहिए।
2: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।
4: और ये सर, सर का क्या हाल है?
2: सर आपका क्या हाल है बताएं।
3: मेरा हाल अच्छा है जी, मेरा हाल बहुत अच्छा है, मैं बस सूजी के हलवे का इंतजार में हूँ।
2: यार भूल जाइदा हुंदा, एक गल नूं भूल जाइदा हुंदा, नहीं पै जाइदा उस गल दे पिछे। असद भाई
3: जी जी जी जी, मुझे हेडफोन दे ना, यहाँ देखें पड़े हैं हेडफोन।
2: ये आप
3: जी जी भाई, जी भाई
4: मैं कह रहा हूँ असद भाई, आपके जो रहमान
3: जी, मैं हुंदी ढोल।
2: एक मिनट ठहरो यार नवीद, तुम्हारी आवाज प्रॉपर तरीके से उन तक पहुंचाएं, वरना फिर अब बोलो, अब बोलो।
4: मैंने कहा सर ये रहमान भाई, मैंने सुना यार ये हलवा बहुत अच्छा बनाते हैं।
3: ये बातों का हलवा बनाते हैं।
2: हाँ
3: बातों का हलवा,
2: यानी कि आप चाहते हैं कि लोगों की याददाश्त से ये मिट ना जाए, है ना?
4: हाँ, तो मैंने रात को ये भी सुना था कि सर ने ये भी बोला था कि मैं अगर कढ़ाई पसंद करूँ तो मैं फैसलाबाद की पसंद करूँ।
2: जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे लगता है कि वहाँ की जो कढ़ाई मैंने खाई है वो बड़ी जबरदस्त है।
4: ये भी रात को, मैं रात का ये भी नहीं बोला कि आपके सामने सेवन अप की बोतल पड़ी थी और आपने कहा इसमें दो सोडा बनाना, मैंने दो दो तो।
2: अच्छा वो मैंने नहीं कहा था। वो कुल्फी वाले ने कहा था।
4: बोला था कि दूध पड़ा था उसकी चाय बना ली, अब दूध कहाँ से।
2: हाँ ये भी मैंने नहीं बोला। अच्छा यार थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नवीद, सलामत रहो यार। ओके जी ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बातें आप भूलने ना दीजिएगा किसी को, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम सर, की हाल है? ठीक हो?
2: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का करम है जी। कौन गल कर?
5: वन वन की रहमान अरवर शान और जान आज दाऊद साहब।
2: हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही
3: जी जान।
2: आगे से उन्होंने भी कहा जी जान।
5: हेलो
2: जी जी, क्या कह रहे हैं? बोले बोले बोले।
5: मैं कह रहा सर बोधी जट गल कर रहा हूँ सर, रावी के कंडे।
2: अरे रावी के कंडे, ठंडिया मिठिया हवावा है।
5: हाँ जी, आज तो सर हवा बिल्कुल नहीं चल रही, आज तो गर्मी बहुत गर्मी।
2: ओए ना करें दादियां गल्लां, मेरा दिल ही रखने लिए कह देंदा कि चल रही है हवा, खुश हो जाता।
5: नहीं सर हवा बिल्कुल चल रही थी, रोज सर्दी लग गई, यकीन मनो तो चादर ला के सोई जाए।
2: अच्छा
3: मैं कह रहा राती इन्नी सर्दी सी सर, -8 टेंपरेचर, मैं कंबदा ही रहा घर वाले, बुआ नहीं खोले।
2: मैं लगता है कि तुसी फ्रिज दे विच होगे उस टाइम, क्योंकि गलती दे नाल फ्रिज तुहाडा कमरे जिड्डा होएगा, थानू लग्या होएगा।
3: यकीन करें और स्नोफॉल शुरू हो गई, और इतने बड़े बड़े
2: स्नोफॉल। यार अच्छा ये आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना, दोबारा बात करें, क्या कह रहे थे?
3: स्नोफॉल, और फिर इतने इतने बड़े स्नो फ्लेक डिगते रहे रात सारी। आप यकीन करें, वो मैं तो, मेरी तो बस ना पूछें क्या हालत रही है रात सारी।
2: यार लुकोगे क्यों, चले जाने ने इधर रिमोट यार। कौन लोग ने यार। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम क्या था रावी दे कंडे तो? बाबर दसिया सी नाम?
5: नहीं सर, बोधी जट सर।
2: बोधी जट,
3: बोधी जट।
2: अरे जबरदस्त, सलामत रहो जट साहब, बहुत शुक्रिया।
5: सर तुसी गल कर रहे हो जे कि अपनी गल किसी ने शेयर करनी चाहिए।
2: आहो
5: हाँ जी सर, मुखलिस दोस्त होए तो सर बिल्कुल दसना चाहिए सर, होना मुखलिस चाहिए सर।
2: फिर भावे सब कुछ उन्हें दस दियो, कोई मसला नहीं
5: जी सर, लेकिन अजकल जो दोस्त होंगे ने ज्यादातर सर झूठा ही होंगे ने, मुखलिस कोई कोई होंगे, उन्हें सज्जन कोई कोई, तो दुश्मन हर कोई।
2: बड़े
5: शौक ना सारा सी प्रोग्राम सुनने, कल भी सर सारा ही सुनिया, ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
2: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ।
5: ਆਪ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।
2: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰਫ ਸੇ ਜਬ ਕਾਲਸ ਆਤੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਤ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਮੇਰੀ
6: ਫਿਰ ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ।
2: क्या नाम है आपका, अपना नाम बताइएगा।
6: मैं बिस्मा हूँ, आप कैसे हैं?
2: जी बिस्मा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ आरजे डॉक्स मौजूद हैं और आखिरी कॉल आपकी ही थी मेरे प्रोग्राम से पहले, मैं जानता हूँ।
6: हाँ जी, मुझे पता है डॉक्स आपके साथ है।
2: अच्छा, तो करें बात, क्या बात करना चाह रही हैं आप, क्या कहना चाह रही हैं?
6: मैंने मैसेज किया अभी 4471 पे, और मैंने ये कहना था कि ये जो 4471 पे जो मैसेज हम करते हैं वो पढ़ लिया करें, सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट किया करें अगर वो आ जाते हैं तो। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते तो हमारा दिल खून के आंसू होता है कि ये क्या हो गया। तो मेरा तो होता ही कि मैं वापस ले लूँ, किसी तरह ऑप्शन हो तो मैं अपना मैसेज वापस ले लूँ, मुझे मेरा पढ़ा क्यों नहीं
2: मैसेज। वाकई ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। दिल दिल दिल खून के नहीं, आंखें, आंखों से आप कह रही थी ना, खून के आंसर होता है दिल,
6: दिल खून के आंसर होता है।
2: अच्छा, दिल खून के आंसर होता है,
3: दिल में कितनी दफा रोता है?
6: अच्छा, उल्टा रोता है शायद मैंने।
3: दिल दिल में कितनी दफा आपका दिल खून के आंसर होता है
6: दिन में?
2: क्या नहीं गिना आपने कभी? नहीं गिना होगा आपने, मुझे यकीन है।
3: मतलब थोड़े से मैं चाह रहा हूँ खून इकट्ठा कर लेना, डोनेट कर दिया करें,
2: हर चार महीने के बाद ना डोनेट कर दिया करें। पहले तो सीधा गल करना, मैं जरा लब के ही आ जा रहा हूँ।
3: आप ना इसको डोनेट करना सीखें, आप लिखा करें टीयर ब्लड, मेरे आंसुओं का खून।
6: अच्छा,
3: नहीं
6: तो देना किसको है ये, कौन लेगा ये?
3: बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया है।
6: मेरा बी पॉजिटिव है।
3: बहुत सारे ड्रैकुलास यहाँ पे फेर रहे होते हैं खून के प्यासे।
6: अच्छा, मैंने तो, आपने बोला था रहमान भाई ने सुना तो है मेरी लास्ट कॉल थी, तो पर आपने गाना नहीं चलाया मेरा, कैसे डीजे
3: हैं
6: आप?
3: मैं इस गुस्ताखी पे सरीहन जो है ना जी माफी का तलबगार हूँ, और मैं चाहूंगा कि इस तरह की हम गुस्ताखी को मत दोहराएं।
6: वो अपने दर से लगाती हैं, ये ना वो शायद गाना प्ले करे तो उनका शो ही सारा खराब हो जाए, तो टेम्पो वगैरह सब। अक्सर मैं रहमान भाई का शो सुनती हूँ तो मुझे सुनते सुनते नींद ही आ जाती है, कभी मैंने कंप्लीट नहीं सुना। एक दो दफा हुआ है मैं कंप्लीट पहुँचती हूँ 2 बजे तक, फिर 2 बजे के बाद से नींद आती है, नींद तब आती है जब गान शुरू होती है तब से नींद आना शुरू होती है।
3: आपके अंदर का उस वक्त शैतान तो नहीं जाग जाता, अजान शुरू हुई है, सो जा सो जा सो जा बिस्मा सो जा,
2: थपकियां देता है ऐसे ऐसे ना, ये कमर के बैक वाली साइड पे ऐसे ऐसे, सो जा सो जा, कुछ नहीं होता, सो जा, इजी हो जा, टेंशन नहीं लेनी।
6: रहमान भाई, आपने वो बोला था ना कि मैं मोड पे बताऊंगा, तो वो कौन से दिन हो गए जब आपने ये बताना है?
2: क्या क्या बताना है, किस बारे में क्या बता रही थी आप?
6: वही जो आपने बोला था कि मौत पर मैं बात करूंगा कि आपको डर नहीं लगेगा।
2: अच्छा, ये मैं ही रखूंगा टॉपिक, किसी दिन जरूर रखूंगा, और मुझे बस याद रह जाए ये किसी दिन ना, कि आज मैंने ये अक्सर औकात जो मैं टॉपिक्स रखा करता हूँ वो अपनी जिंदगी में जो चीजें चल रही होती हैं वो कहीं ना कहीं तासीर मुझे लगता है कि उनमें ज्यादा होती है, क्योंकि वो आपके ऊपर बीत रही होती हैं।
6: ऐसे क्यों बोले थे कि मैं घर जाता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अभी भी घर जाना
2: है। हाँ, ये मैंने शेयर मैंने किसी और का लिखा हुआ यहाँ पे पोस्ट किया था, तो वो लोगों को ये लगा
3: ये एक और शादी का इरादा रखते हैं,
2: 3-4 शादियां करना चाहता हूँ मैं,
3: इसलिए रखा था ना।
2: वाह,
6: अच्छा आप शादी शुदा हैं?
3: नहीं नहीं, वो चारे इकट्ठे 2-3 कर लें। मेरे ना रहमान भाई,
2: जी जी जी जी,
3: अक्सर यार ये सवाल जो पूछते रहते हैं ना मेरे, तो आप शादी क्यों नहीं कर रहे, शादी क्यों नहीं कर रहे?
2: हाँ, ये क्यों पूछते हैं आपसे, ये तो
3: पता नहीं क्यों पूछते रहते हैं। हालांकि मैं इन्हें बता भी चुका हूँ, व्हेन आई वाज इन 5th grade,
2: हाँ 5th grade,
3: हाँ
2: अच्छा,
3: मैं शुरू से ही नालायक था। लायक आता था फिर भी लफ्ज में,
2: हाँ हाँ
3: लेकिन ना के साथ ना
2: हाँ हाँ नहीं वो ये जरूरी था, ये भी ना होता तो फिर मतलब बुरी बात थी।
3: और मैं था भी बैक बेंचर, पता नहीं मेरी उस्तानी को क्या हुआ,
2: हाँ
3: उन्होंने ड्रामा एक करवाना था उसमें उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया।
2: अच्छा,
3: जिसमें मुझे बाद में एहसास हुआ मैं शुरू से ही ड्रामेबाज था शायद इस वजह से शायद सिलेक्ट किया। अदरवाइज तो मतलब मैं बड़ा आम सा बच्चा, बड़ी मुश्किल से पास होने वाला, जिसे मार मार के पढ़ाया जाता कि पढ़ ले नहीं तो साइकिलों की दुकान पे पा देना, अब्बा जी ने ये कहना मैं कहना
2: साइकिलों वाली दुकान
3: पे, मैं कह रहा यार ये तो काम खतरनाक है ये नहीं अच्छा थोड़ा बहुत कर ले, दुकान पे नहीं जाना बाकी किसी भी दुकान पे ले जाना। तो उसमें अब उन्होंने ड्रामे का मुझे
2: साइकिलों वाली दुकान
3: मैं कह रहा यार ये तो काम खतरनाक है ये नहीं अच्छा थोड़ा बहुत कर ले, दुकान पे नहीं जाना बाकी किसी भी दुकान पे ले जाना।
2: हाँ।

0: पांच थी।
1: सुभान अल्लाह।
0: और
1: पांचवीं क्लास में।
0: हाँ, पांचवीं क्लास में।
1: किस कदर आप मतलब खुशियों को ओढ़ कर चलते रहे, मतलब बारिशें आपके ऊपर होती रही। आप चाहते नहीं थे कि ये बारिश हो, लेकिन आप वो खुशियों की, वो जितने भी लोगों की हसरतें हैं, उनका खून कर रहे हैं।
0: मैं कह रहा हूँ, यकीन करें, मैं बैंक बेंचर वो पढ़ने वाली लड़की
1: हम सिर्फ उस वक्त अंगूठा ही चूसते होते थे, और ये माशाल्लाह तीन अजवाज के साथ हैं।
0: हेलो,
1: वाह वाह।
2: मतलब देखिए रहमान भाई,
0: सुने पहले सुने मेरी बात, मेरी बात तो सुने।
1: क्या करने आए हैं बिस्मा हम इस दुनिया के अंदर यार?
0: मेरी बात सुने। वो लड़की है, वो लड़का नहीं है।
1: अच्छा, मुझे लग रहा था कि जैसे वो अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा
0: अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि तीन मेरी वो थी बीवियां।
1: अच्छा,
0: तो एक
1: एडिक गल करके ना बंदा स्विच ऑफ भी कर देता होता है कि अच्छा तीन ना इन दिया, चलो ठीक है।
2: बार बार बता रही
0: तो ना वो दो। हाँ। वो तीनों आपस में सहेलियां निकल आती हैं।
1: ओ प्यारे अल्लाह।
0: हाँ, वो एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से मिलने जाती है।
1: लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अपने सामने देख रहा हूँ, तो अभी मुझे ना खुशी हो रही है। अच्छा,
0: तो वो दोनों दो सहेलियां मिलती हैं।
1: अच्छा,
0: और आपस में गपशप लगा रही होती हैं बैक स्टेज। अब मैं सुन रहा होता हूँ डायलॉग, उसमें मैंने वेट करना होता है कि जब वो डायलॉग आता है ना, अच्छा तुम्हारे हस्बैंड का क्या नाम है, वो बताती है। फिर वो मैं, अच्छा अजीब इत्तफाक है, मेरे हस्बैंड का भी यही नाम है।
1: अरे हाँ, अच्छा।
0: और फिर एकदम से मेरी एंट्री होती है, मैं हाथ में बैग पकड़ा होता है, ऐसे करके एंटर होता हूँ। मैं आवाज दे के कहता हूँ, तो नाम भी भूल गया, मुझे इतना याद है उसका, जैनी नाम नादिया था। वो याद है ड्रामे में क्या था ये भूल गया। मैं एंटर होके मैं कहता हूँ मैं आ गया, वो बड़ी खुश होके मिलती है, आप आ गए, मेरी फ्रेंड आई है, मैं मिलवाता हूँ।
1: अरे,
0: तो मैं जैसे सामने जाता हूँ ना, मैं पीछे की तरफ मुंह छुपाने लगता हूँ, वो कहती आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो हाँ। कहती है मेरा शौहर है। नहीं, ये मेरा शौहर है।
1: अच्छा,
0: उधर उनका आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। पीछे से बेल होती है, मैं उधर जो एक काम वाली होती है हमारी, उसके अंदर दिखाई हुई, वो वहां पे झाड़ू फेर रही होती है, वो बेल जाके दरवाजा खोलती है, तो तीसरी बीवी अंदर से नमूना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी आ जाती है,
0: वो भी वहां पे ढूंढती हुई आ जाती है।
1: अच्छा, शक होता है कि यही घर।
0: तीनों फिर आपस में उलझ पड़ती हैं।
1: अच्छा,
0: लड़ पड़ती हैं। तीन हो गई मुकम्मल।
1: हाँ, मुकम्मल।
0: जब तीनों शिद्दत से लड़ रही होती हैं, राज्य के क्या चल रहा है,
1: तब आप निकल जाते हैं।
0: तब मैं वो झाड़ू जो लगा रही होती है ना काम वाली, उसका हाथ पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ो इन्हें, आओ हम चौथी शादी करें।
1: अच्छा यार, ये मजे का एक्टर वैसे है ये। अच्छा,
0: और उस पे मैं उसे लेके निकल जाता हूँ ऑफ स्टेज, और तीनों बीवियां पीछे पीछे आती हैं मेरा नाम लेती हुई। उसके बाद मजाल है कभी उन्होंने दोबारा मुझे मुंह भी लगाया हो।
1: अच्छा नहीं, मैं इसमें ना इसमें इम्प्रोवाइजेशन चाहता था, मैं चाहता था कि वो कम से कम थोड़ी सी मार तो पड़ जाती, उधर बैलेंस खत्म हो गया पाए।
0: तो ये सारा सीन रहा, मेरा ख्याल है वो उस वक्त की तकमील हुई है ऐसी।
1: उसके बाद अब जहन में कभी इस तरह का गुमान ख्याल भी नहीं गुजरा है ना।
0: उसकी वजह से लगता है वो हाँ लग गई।
2: हेलो
1: जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं जी?
2: मैं साजिदा बात कर रही हूँ। सर कैसे आप?
1: जी साजिदा बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आप खैरियत से? आपकी आवाज जो है ना वो मतलब कि इस तरह लग रहा है कि डिस्टॉर्शन है, या फिर लहरें जो है ना वो सही से पहुंच नहीं पा रही। आवाज आ रही है आपको साजिदा? तो लगता है कि वो कट गई वाकई। अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखा ना, ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है ऐसी ना, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशंस जो है ना वो कभी कभी आ जाती हैं। थोड़ा सा ना आप अपने घर के जिस जगह पे, जिस स्पॉट पे खड़े होते हो, वो जरा बदल के आप जरा कर लिया करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी जैनब, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे साथ आरजे डॉक्स भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी आप?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि रात को मेरी कॉल क्यों कट गई
1: है?
0: प्रोग्राम एंड हो गया था।
2: मैं बात कर रही थी, जान गई ने मेरी कॉल कर दी।
1: अच्छा नहीं, मुझे मुझे याद नहीं। अच्छा 12 बजे से पहले वाले प्रोग्राम के अंदर आप बात कर रही?
2: क्या,
1: कौन से प्रोग्राम की? अच्छा ठीक है, कॉल कट गई, मुझे माफी माफी दे दें। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
2: बहुत बुरा लगा था, मैंने अभी से भी बात कर

0: Oh, extremely. Extremely happy. अच्छा नहीं, I'm really sorry. आपको गलती हुई मुझसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था.
1: नहीं, आपने तो ना कहा आपकी माफी मांग रहे
0: हैं. अच्छा ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक.
2: किसने काटी थी फिर?
1: श्याम भाई ना, मेरा ये गिला रहेगा.
0: किसने की, किसने काटी थी ये कॉल आपकी?
1: जी श्याम भाई ने.
0: अच्छा पाए ना, वो इतों आके कट सकते
2: नहीं,
0: तुसी होवोगे फिर. अच्छा ठीक है, चलो माफ कर दो. अब कोई आगे वाली बात कर लो ना, जो भी था उसको माफ कर दो. नहीं नहीं करना तो दिल में रख लो उसके लिए, लेकिन अभी बात करो आगे.
1: नहीं मैंने, मेरा गिला उनसे जरूर रहेगा.
0: हाँ नहीं सही है, जिशान भाई को छोड़ना मत.
1: वो सुन रहे हैं?
0: नहीं वो नहीं सुन रहे.
1: अभी आ जाएगी नहीं वो?
0: हाँ नहीं, वो दरअसल इस्लामाबाद से प्रोग्राम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं लाहौर में.
2: आप बताएं क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं कह रही हूँ ना, डॉक्टर भाई है ना जो, वो बहुत अच्छे हैं.
0: अच्छा
1: प्यास बात करते हैं ना, वो बात भी सुनते हैं, वो कॉल नहीं करते.
0: अरे ये अभी आपको गुस्सा आने लगा था ना, जैसे इसने ये बात की है, आप दोबारा से ठंडे हो गए ना. अच्छा अच्छा ठीक,
2: भाई ऐसे ही होते हैं.
0: हाँ ठीक है,
2: भाई अच्छे ही होते हैं.
0: ओके
1: डन. बैंक नाम भी भीष्मा है.
0: अच्छा जबरदस्त, दोनों मिलके तो नहीं कॉल करती हमें आप लोग?
1: क्या
0: आप दोनों मिलके तो हमें अलग अलग कॉल नहीं करती?
1: नहीं, ये तो मेरी बहन को किसी से बात भी नहीं करती.
0: ये ओ नहीं क्या होता है? मैं दोस्त हूँ आपका, जो ओ नहीं कह रही आप. ये क्या होता है ओ नहीं है? कहते हैं नहीं सर, ऐसे नहीं होता.
2: एक्सप्रेशन.
0: अच्छा
2: अच्छा मामू,
0: कौन मामू लगता है आपका?
2: मामू रहमान मामू.
0: अच्छा मुझे मामू कहा इसने?
2: हाँ, आप तो
0: शर्म नहीं आती रात के इस टाइम पे तुम कॉल कर रही हो रेडियो के ऊपर? बताता हूँ तुम्हारी मामू मैं अभी. हाँ क्या क्या हुआ सर? क्या हुआ? नहीं डरना नहीं है तुमने, बात करनी है तुमने.
1: नहीं किसी से बात भी नहीं करती, वो बिस्मा जाती है, वो इतनी श्योर है.
0: शियार है इतनी. अच्छा ठीक है,
1: कैसे बात कर रही है? मेरी अभी तो किसी से बात भी नहीं करती.
0: अच्छा चलो ठीक है,
1: कैसी हाय डॉग?
0: और सुनाओ क्या खाया तुमने? यही बातें करनी है तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं फिर. और सब ठीक है? आज किस किस की बदखोई की है आपने, दोनों बहनों ने मिलकर?
1: किसी की भी नहीं की.
0: अच्छा चलो ठीक है,
2: कहाँ बात कराओ, जरा बात कराओ.
0: अच्छा ये तो कहीं बारे दिगर आपके ऊपर तीर बन कर तो नहीं गई, गिरा गई यार? ये ऐसे नहीं होना चाहिए.
2: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं जान बूझ के, मुझे पता था वो कॉल काटेगी.
0: अस्सलाम वालेकुम जी. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ,
2: तुम्हें कैसे बताएं हम कैसे हैं?
0: हाँ
2: मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता.
0: वाह वाह क्या कहने क्या कहने, सुनाए सुनाए सुनाए
2: सुनाए. आप कॉल ले लें.
0: अच्छा कॉल लेने,
2: हाँ एक मिनट
0: सुना ही दें आप, मैं तो कहता हूँ सुना दें.
2: अगर तुम सुनते हो.
0: सुनाना आता ही बहुत है आपको, सुना ही दें.
2: मिशाल कुछ सुनाऊं मैं?
3: बिल्कुल
2: आप सुन ले, सुना आपको नहीं रहा लेकिन आप सुन ले.
0: अच्छा मतलब कि अगर मतलब खुश फहमी भी ना हो किसी को, है ना? हाँ, मतलब कि हाँ, दिल के अंदर हाँ, कोई ये भी ना हो कि चलो मुझे कहा है तो चलो यार, कोई मतलब दिल रख लेता बंदा किसी का, कुछ नहीं,
3: मतलब नहीं
0: नहीं ये मिसाल ये नहीं गलत गलत बात है तुम्हारी तरफ, मैं रोऊंगा यहाँ पे, मैं कहूंगा इनको ऐसे नहीं करते
2: हैं। नहीं नहीं मैडम मिसाल बड़ी पुरानी कॉलर है हमारी, चार साल हो गए इनके साथ एक पुरानी रफाकत का सिलसिला है
3: और फिर वादा भी किया है कि चरखा मैं नहीं मिलूंगा।
2: हाँ वो नहीं मिलेगा जी, वो उस पे रफाकत जो है रकाबत में बदल
3: जाएगी।
2: तुम्हें कैसे बताएं हम मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता।
0: आगल वैसे सूटेबल हो रही है, मतलब कि अगर वो मानवी लैंड
2: है ना,
0: मोहब्बत और कहानी में,
2: कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता।
0: वाह वाह,
2: सुनने वाले हैं ना, बहुत सारों ने कहानियां भी पढ़ी।
0: हाँ
2: इंटर्न्स भी हैं। तुम्हें कैसे बताएं हम मोहब्बत और कहानी में कोई रिश्ता नहीं होता, कहानी में तो हम वापस भी आते हैं।
0: वाह वाह,
2: मोहब्बत में पलटने का कोई रास्ता नहीं होता।
0: वाह वाह वाह, क्या क्या,
2: ये रहमान भाई की फेवरेट नज्म है,
0: बिल्कुल ऐसे ही
2: जो आज इन्होंने मुझे अनायत की है। जरा सोचो, जरा सोचो, कहीं दिल में ख्वाहिशें डालती यादों की सफाकी,
0: हाय हाय हाय,
2: कहीं दामन से लिपटी है किसी भूली हुई समात की नम नाकी।
0: वाह वाह,
2: कहीं आंखों के खैमों में चिराग ख्वाब गुल करने की साजिश को हवा देती हुई रातों की चालाकी। मगर मैं बंदा खाकी, ना जाने कितने फिरौनों से उलझी है मेरे लहजे की बाबा की बेबाकी।
0: वाह वाह,
2: मुझे देखो,
0: मुझे देखो,
2: जरा सोचो, मुझे देखो, मुझे देखो, मेरे चेहरे पे कितने मौसमों की गर्द, और उस गर्द की तह में समय की धूप में रखा एक आईना, और आईने में ताहद्दे नजर फैले मोहब्बत के सितारे अक्स बन के झिल मिलाते हैं, नई दुनियाओं का रास्ता बताते हैं। इसी मंजर में आईने से उलझी कुछ लकीरें हैं, लकीरों में कहानी है, कहानी और मोहब्बत में अजल से जंग जारी है।
3: क्या बात, क्या
2: मोहब्बत में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आकर कहानी हार जाती है। हाँ मोहब्बत में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आकर कहानी हार जाती है। कहानी में तो कुछ किरदार हम खुद फर्ज करते हैं, मोहब्बत में कोई किरदार भी फर्जी नहीं होता।
0: वाह,
2: कहानी को कई किरदार मिलजुल कर कहीं आगे चलाते हैं, मोहब्बत अपने किरदारों को खुद आगे बढ़ाती है। कहानी में कई किरदार जिंदा ही नहीं रहते, मोहब्बत मोहब्बत अपने किरदारों को मरने ही नहीं देती। कहानी के सफर में मंजरों की धूल उड़ती है, मोहब्बत की मुसाफत राहगीरों को बिखरने ही नहीं देती। मोहब्बत एक शजर है और शजर को उससे क्या मतलब कि उसके साये में जो भी थका हारा मुसाफिर आकर बैठा है, अब उसकी नस्ल क्या है, रंग क्या है, कहां से आया है, किस सिमत जाना है। शजर का काम तो बस छांव देना, धूप सहना है, उसे इससे गर्ज क्या है, पड़ाव डालने वालों में किसने छांव की तकसीम का झगड़ा उठाया है।
0: हाय हाय हाय,
2: कहां किस अहद को तोड़ा, कहां वादा निभाया है। मगर हम जानते हैं छाओ जब तकसीम हो जाए तो अक्सर धूप के नेजे रगों में उतरते हैं और उसके जख्म खुर्दा लोग जीते हैं न मरते हैं,
0: जीते हैं न मरते हैं।
2: जरा सोचो,
0: वाह वाह,
2: जरा सोचो और मुझे देखो।
0: नजर नहीं आ रहे आप, क्या करो, लाइट्स मैंने ऑफ की हुई।
2: थैंक यू थैंक यू।
0: क्या कहने डॉग्स, क्या कहने, बहुत बहुत खूबसूरत,
3: क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे और बड़ा अच्छा लगा। और
0: मिशाल क्या कहना चाह रही है, मिशाल का दिल क्या कहना चाह रही है?
3: मैं जो कहना चाह रही हूँ पता ही नहीं, क्योंकि जो मैं कहना चाह रही हूँ मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी कुछ अर्सा पहले जहाँ गई हुई थी और वहाँ पे समंदर ही समंदर,
2: और फिर भी आप जिंदा वापस आ गई।
3: बिल्कुल वापस,
2: हैरत की बात है। आगे समंदर, पीछे समंदर, दाएं समंदर, बाएं समंदर, पीने को एक कतरा नहीं, डूबने को जा मुयस्सर नहीं।
3: ये सिर्फ कहने के बाद हकीकत में ओ, ओ, ओ, एरिया जिधर कॉर्नवाल में मैं थी, तो वहाँ हर तरफ पानी ही पानी, समंदर ही समंदर, और समंदर की लहरें, और यकीन करें बड़ा ही खूबसूरत वो जो वक्त था, वो इतना खूबसूरत लग रहा था उस वक्त, और यकीन करें और पानी के कई रंग देखे, और हर टाइम का एक डिफरेंट वो बिल्कुल शेड दे रहा था और बड़ा।
0: अरे वाह,
3: वो कभी खूबसूरत तरीन वो पानी, और खूबसूरत तरीन वो रेत, जिसको कहते हैं ना कि मतलब मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है, जो मैं इतनी खूबसूरत और इतनी ज्यादा नेचर के करीब होना, और वहाँ फिर और मजे की बात फिर वहाँ सब्जा भी होना, वहाँ ग्रीनरी भी देखी बहुत सारी, और उसके साथ साथ तो वो मैं अभी जब पोएट्री सुन रही थी, तो मुझे मैं बिल्कुल कुछ लग रहा था वहाँ बैठी हुई और सुना इधर से जा रहा है। तो क्या खूबसूरत लम्हे, वो कुछ ऐसे लम्हे तो क्या आप कभी भी उसमें से बाहर ही नहीं आ पाते।
0: और ऐसे लम्हात जो होते हैं ना, ऐसे मंजर जो होते हैं, ऐसा वक्त जो हम बिताते हैं, वो हमेशा हमें याद रह जाता,
3: जो कि नेचर के बिल्कुल साथ आप जुड़े होते हैं, यानी कि वहाँ आपको कुदरत ही कुदरत नजर आती है, आपको उसके क्या क्या रंग नजर आ रहे थे, उन रंगों को आप किस तरह से इंजॉय कर रहे थे, कि आपको दिल नहीं कर रहा था वहां से वापस आने को, आप वहाँ घंटों ही बैठे रहो, और आपको हर कुछ देर बाद कुछ एक नया मंजर, एक नया नजारा, एक नया ही मजा आपको आ रहा होता, तो बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो बस कभी कभी उसके साथ जुड़ना, और फिर उसके साथ बातें करना, और वो एक अपने मजा था। अभी आप पूछे थे कि इंसानों से, मेरा ख्याल दोस्त हो कोई भी हो, क्या ही अच्छा, हम उस रात से बहुत सारी बातें कर लिया करें। वो कहने ना कि दिल वाला हाल किसी ने नहीं चढ़ाएगा, है ना, तो वो ही होना चाहिए कि अपनी बातें जो होती है ना, क्या ही अच्छा हो कि हम अपने साथ या फिर उसके साथ करते रहे।
0: बिल्कुल ऐसे
3: इंसान किसी और दूसरे की लोड थोड़ रहेंगे एक्चुअली।
0: थैंक यू वेरी मच मिशाल,
3: थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह
0: खैर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। मैंने जो ही कमरे का दरवाजा खोला, देखता क्या हूं, कमरे की जो चीज जहां थी वैसी की वैसी धरी हुई है। ड्रेसिंग टेबल के कोने पर सेफ्टी पिन के डिब्बे का ढकना बस यूं ही गिरा पड़ा है। एयरब्रश के दांतों में कुछ बाल हैं तेरे फंसे हुए, सेंट की शीशी खुली हुई है। तेरे पर्स के अंदर से एक शख्स की फोटो उसके ऊपर गिरी हुई है। मेरी चप्पलें बालकनी के दरवाजे की ओट में उल्टी पड़ी हुई हैं। मेरी घड़ी और तेरा कंगन तकिए के नीचे से होकर फर्श पे ओंधे पड़े हुए हैं। टीवी सेट भी जब से यूं ही खुला हुआ है। कैन के सिंगल सीटर के एक बाजू पे मेरी बेल्ट के हुक में तेरे सब्ज दुपट्टे का एक कोना अड़ा हुआ है। बिस्तर की चादर और तकिए एक दूजे से गुत्थम गुत्था होकर गहरी नींद के थल में धसे हुए हैं। उन्हें जाने से पहले जो मंजर जामिद किया था, उसमें कमरे का दरवाजा खोल के मैं भी शामिल हुआ खड़ा हूं। काश अचानक धम से आकर तू इस जमे हुए मंजर को अपनी आहट की हिद्दत की आस तो दे। मुझसे बाहर मुझ में शामिल इस मंजर का कोई हिस्सा सांस तो ले। ट्रैक शामिल कर रहा हूं, वापस आता हूं।

लेकिन मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं तुम्हारे सामने मुकम्मल तौर पर अपनी जात को खोलकर बयान करता हूं, जितना मैं जानता हूं, जितना मैं समझता हूं। यहां पे इज्जत और जिल्लत का कोई ख्याल, कोई तसव्वुर, कोई बात ही नहीं। यहां पे ऐसा कोई एहसास ही नहीं है जो मनफी असर रखता हो, जो तुम्हारे बारे में गलत सोचता हो, जिसको तुमसे कोई खौफ हो, जिसको तुमसे कोई डर हो कि शायद मेरे किसी इंतहाई मुसर्रत आमेज लम्हे के अंदर तुम्हारे बारे में अपनी ज़ात को मुकम्मल तौर पर अया करते हुए जो अल्फाज ज़बान से निकले वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल करोगे कभी, ऐसा कोई ख्याल कभी जहन में आया ही नहीं। ऐसे एहसास ने कभी जन्म ही नहीं लिया। कुछ इंसान हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कुछ इंसान हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी जात की मुकम्मल हकीकत बता देना चाहते हैं, लेकिन हमारी ही जात के अंदर अंगड़ाइयां लेती हुई, अटकेलियां करती हुई जो एक नर्म गोशा रखती हुई एक रूह है ना, वो कभी कभी पांसा पलट देती है, वो कभी कभी कुछ नया ही रंग जाहिर करने लगती है। लेकिन मुझे तुमसे कोई खौफ नहीं है, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, मुझे तुम्हारे सामने अपने आप को, अपने आप की हर खामी को बयान करना भी अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। ऐसा कोई एहसास कभी जन्म ही नहीं लेता है, ऐसा कोई एहसास जहन में कभी आता ही नहीं है। लेकिन ये सवाल जितना सादा दिखाई देता है ना, ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है कि क्या अपनी जात को मुकम्मल तौर पर अयां कर देना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो पूरी तरह हमें समझे, हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारी कमजोरियां, हमारे ख्वाब, हमारी नाकामियां, हमारी बेमरवत आदत, हमारे सारे के सारे खाम ख्यालात, सब कुछ। मगर सवाल यह है कि क्या हर शख्स हमारी पूरी जात को जानने का अहल हो सकता है? वो एक इंसान जिसके बारे में हम कभी सोचते हैं, क्या वो भी जानने का अहल हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं से तुम हो गया हूं तो तुमसे कहीं मैं तक का सफर ना करना पड़ जाए? मीम से ते तक का सफर मोहब्बत छोड़कर मौत की जानिब ना निकल जाए? यकीन करें, इंसान की जो जात है वो समुंदर की मानंद है। किनारे पर खड़ा शख्स सिर्फ लहरें देखता है, गहराइयां नहीं देखता। हर इंसान आता है दो चार बाल्टियां भरकर अपनी मर्जी की चला जाता है। कितने इंसान आते हैं हमारी जिंदगियों में जिनको बाज़ोकात हम ब्रेकअप्स बोल देते हैं, हमारे एक्सेस बोल देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं ना, अपने अपने हिस्से की बाल्टी भरकर, अपने अपने हिस्से के इमोशंस लेकर, अपने अपने हिस्से की मोहब्बतें लेकर आके कहीं बढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो अपने आप को मुकम्मल अयां कर देना चाहता है, उसे अपनी जात की ये वाली हकीकत कभी भूलनी नहीं चाहिए कि वो एक समुंदर की मानंद है जो कहीं से गहरा है, कहीं से उसकी सतह का इल्म हो जाता है। लेकिन हर किसी को उसकी गहराइयों तक पहुंचने की इजाजत कभी नहीं होनी चाहिए। जो एक बैलेंस्ड इंसान होता है ना, जिसकी शख्सियत
बैलेंस्ड होती है वो अपनी हुदूद कायम करना जानता है। अपनी हर बात, हर राज, हर जख्म हर इंसान के सामने खोल देना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी के सामने रोना भी उसको अच्छा नहीं लगता, उसके सामने भी। लेकिन अगर वो ही कहे कि मेरे सामने रो लो, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं है, खुल के सारी बातें कर लो, सारे एहसास आंसुओं की सूरत, अगर अल्फाज की सूरत जबान पर नहीं आ सकते तो आंसुओं की सूरत बहा दो, लेकिन मेरे सामने वो इमोशंस, वो चेहरे के बदलते हुए तगैयुरात, बदलते हुए लम्हात, वो सारे के सारे इमोशंस मुझे चाहिए हैं। अगर कोई ऐसा कह दे, अगर कोई अपने एक्शन से ये प्रूफ कर दे कि वाकई में वो है तुम्हारे लिए, तो फिर उसके सामने रोना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं से हकीकत का रास्ता तो निकलना है ना, कहीं ना कहीं से उसने दरमियान में आना है ना, कि इसको भी मैंने ही बनाया है, तुम्हें भी मैंने ही बनाया है ना। लेकिन एक बात दिल चाह रहा है आपके सामने खुलकर बयान करने का, कि अपने जख्म को, अपने दुख को, अपने अंदर वो जो नासूर बनता चला जा रहा है उसको मत दिखाना, चाहे कोई कितना ही करीब क्यों ना हो, चाहे कोई कितना पास ही क्यों ना हो। नहीं, ये गफलत मत करना, हिफाजत करना उस जख्म की, उस एहसास की हिफाजत करना। ये भी जान लेना कि वाकई में एतमाद तोहफा है, अगर तुम्हें उस पे एतमाद है, अगर उसने वो हालात तुम्हारे सामने रखे हैं तो कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर यकीन कर लेना। लेकिन आंखें बंद करना है या नहीं करना है ये तुम्हारी मर्जी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि हम आंखें बंद करके भी किसी पे यकीन करते हैं, या फिर जिस पे यकीन करते हैं आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुमको बेहतर लगे, जैसे तुमको अच्छा लगे। 1:53 टाइम जो है वो पर लगाकर उड़ता है। अभी 1:04 बताया था, अभी 7 मिनट्स बाकी रह गए।

मुझे पता है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके मन में बहुत सारे ख्यालात होंगे, बहुत सारे सवालात होंगे, बहुत सारे एहसासात होंगे जो वो जानना चाहते होंगे, जो समझना चाहते होंगे। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का नाम अधूरी बातें हैं। मैं सब बातें मुकम्मल नहीं करता, मैं सब एहसासात मुकम्मल नहीं करता। मेरी जात में जो सबसे ज्यादा चीज मुझे सुकून देती है, जो मेरी बेचैनी को बढ़ाती है, बेचैनी में सुकून होता है, सच कह रहा हूं। आप क्यों हंसने लगे हैं? हाँ, बहुत सुकून होता है, बहुत अच्छा लगता है बेचैन रहना, बहुत अच्छा लगता है कश्मकश में रहना, बहुत अच्छा लगता है सफर में रहना। मंजिल पर जाने की खुशी नहीं होती कभी, मुझे लगता है कि जैसे वो एक मोड़ है, और वाकई में वो मंजिल मोड़ बन जाता है कि यहां कुछ देर के लिए सस्ताना था और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना था। कुछ लम्हों के लिए अच्छा लगता है बस, फिर उसके बाद आगे की जानिब सफर दोबारा शुरू होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब कुछ अधूरा छोड़ जाऊंगा, मैं कोई भी चीज मुकम्मल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जो छोड़कर जाता हूं वो मुकम्मल से भी ज्यादा ज्यादा रिच एहसास देता है, लेकिन होता वो अधूरा है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी टॉपिक्स हैं वो मुकम्मल नहीं कर सकता कोई। हर टॉपिक के अंदर हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज, कोई ना कोई ऐसा सिरा जरूर निकल कर आता है जो हमने पहले सोचा नहीं होता, समझा नहीं होता। जैसे अगर नफ्सियात के टॉपिक्स के बारे में बात की जाए तो हम ये अंदाजन भी नहीं कह सकते कि इतने टॉपिक्स हैं। हर बार कुछ नए टॉपिक्स उसमें मर्ज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीजें आती रहती हैं। साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ नई चीजें पता चलती रहती हैं कि अच्छा, इस तरह से भी दिमाग सोच सकता है, इस तरह का एहसास भी उसे मिल सकता है। अभी तक 27 से 28 तरह के जज्बों को महसूस किया है हमने, 27 से 28 तरह के इमोशंस को समझने की कोशिश की है हमने। अब मुझे ऐसा लगता है कि इतने तो नाम भी नहीं आपको याद होंगे, आते होंगे, है ना। बहरहाल,

कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी असल हकीकत उनके जबान से अदा हुए अल्फाज में नहीं होती, बल्कि उनकी खामोशियों में कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। और यकीन करें, ऐसी खामोशियां हौसन होती हैं ऐसी शख्सियात की। और कुछ राज ऐसे होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको छुपा कर रखना चाहिए, वो कभी भी आया नहीं हुआ। ख्वाब में जितनी मर्तबा भी उसके बारे में सोचा, वो कभी सामने नहीं आया। अभी आपको चैलेंज दे देता हूं, जितने भी आप में से, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो अपने तख्लीककार को आज ख्वाब के अंदर सोने से पहले देखने की हसरत कर लें। अपनी सारी नेकियों के एवज भी उसको देखने की सिर्फ हसरत कर लें, लेकिन वो नजर नहीं आएगा। मेरा ये मानना है, ये मेरा चैलेंज है, वो नहीं आता है, वो नहीं नजर आता है। उसने अपने आप को छुपा कर रखा है, सिर्फ उसका गुमान किया जा सकता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है, उसके कलाम को पढ़ के उसके बारे में अपनी तरफ से कोई अंदाजा लगाया जा सकता है, मुशाहिदा किया जा सकता है। लेकिन मुशाहिदा उस चीज का होता है जो सामने नजर के होती है, वो होकर भी नजर के सामने नहीं होता। ये सफर बाहर की तरफ देखने से नजर नहीं आता, ये अंदर की तरफ सफर शुरू होता है, ये अंदर की तरफ सफर करता है, अंदर की तरफ बढ़ता है, अंदर से होकर ये आसमानों के रास्तों की जानिब निकलता है। यकीन करें, तो कुछ राज जो होते हैं वो रख लेने चाहिए। उसके शबीह पे अगर बनाया गया है, उसने अगर अपनी शबीह पे हमें बनाया है, तो सीख लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सीख लेना चाहिए उससे। वो राज रखता है तो शायद इसमें कोई हकीकत होगी। राज रख लेना चाहिए अपनी जात का, सब कुछ आया नहीं कर देना चाहिए। बहरहाल कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दे देना चाहिए, ठीक है ना? समझ आया तुम्हें? 1:59 मेरा और आपका साथ यहां तक ही था। कोई बात बुरी लगी हो तो तिफला मकतब समझकर, ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूं। दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशाल राह हो गई, तो मेरा यहां पे आने का, प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता है। इस प्रोग्राम की सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती हैं खदीजा मुराद साहिबा, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर है अहमद सोहेल बसरा साहब। ड्यूटी रूम में मुझे अपनी मावनत दे रहे होते हैं अदील जाफरी। MCR में मेरे बहुत प्यारे से भाई इंजीनियरिंग के फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं हाफिज आसम गुज्जर साहब, बहुत प्यारे भाई। ग्लासेस लगाई होती हैं उन्होंने और ऐसा लगता है चार आंखें हैं, देख रहे हैं मोहब्बत से। मेरी आवाज को आप तक बगैर किसी डिस्टॉर्शन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के पहुंचाना उनका काम है, और वो बखूबी अपना काम निभाते हैं। मुझसे फरमाइश की थी किसी ने के जाते हुए ये नज्म पढ़ दीजिएगा प्लीज, डॉक्टर राबिया आपके लिए ये नज्म है, ठीक है ना? मीसम अली आगा की लिखी हुई नज्म है और पता नहीं क्यों आप सुनना चाह रही हैं। चले, कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी जनाबे आली हुजूरे वाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर लें।

दरअसल मैं आपको ये वाला ट्रैक सुनाना चाह रहा था, ठीक है ना? ये वाला ट्रैक। कई दिनों से मुझे वो मैसेज में लिख रही थी, जनाबे आली हुजूरे वाला बस एक मिनट मुझसे बात कर लें, मैं एक मिनट से अगर तजावुज करूं तो बेशक ना कॉल सुनना। मैं जेरे लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिजी हूं, अभी नई नज्म हो रही है। वो अगले मैसेज में फिर ये लिखती, सिसकती रोती बिलकती नज्मों के उमदा शायर, तुम अपनी नज्में तराशो लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो, कभी तो मुझसे भी बात कर लो, बस एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की बहुत बिजी हूं, बस एक मिनट ही तो है नहीं ना। वो कई दिनों तक खामोश रहती, फिर एक दिन मैंने उसकी हालत पर रहम खाकर जवाब लिखा, बस एक मिनट है और एक मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुप खड़ा था, गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी मैं जानती हूं कि एक मिनट है और एक मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत न कह सकूंगी। सुलगती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पर रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना, कभी मोहब्बत में जलते लोगों का दुख समझना, कभी किसी नज़्म में बताना जिन्हें तुम्हारी रफाकतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं, जिन्हें तुम्हारी मोहब्बतें ही कभी मुयस्सर नहीं हुई हैं, कभी जो महरूमियों के मौसम बहुत सताएं तो क्या करें वो, कभी जो तन्हाइयों की शामें बहुत रुलाएं तो क्या करें वो। अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी, वो एक मिनट की जो कॉल थी ना वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतजर हूं। वो नर्म लेकिन उदास लहजे में बात करती उदास लड़की मेरी समात के अधखिले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है, बहुत सालों से चल रही है वो कॉल, अब तक कटी नहीं है, बहुत सालों से चल रही है वो कॉल, अब तक कटी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।

शादियां जाया, मजबूर हो गया कि मैं जहरा दिया जाया। अठ पहर भी रामा दिया लाशा ते नया है, मजबूर हो गया कि मैं जहरा दिया जाया, मजबूर हो गया कि मैं जहरा दिया जाया। अठ पहर भी रामा दिया लाशा ते नया है, मजबूर हो गया कि मैं जहरा दिया जाया। सज्जा दे हो कैंदा सी चरागा नू बुझाओ, सज्जा दे हो कैंदा सी चरागा नू बुझाओ, गाजी दिया भैणा ने अज दरबार च आया, मजबूर हो गया कि मैं जहरा दिया जाया।

तू घेरे आके वे गुस्ताख सिपाही। चौगिर्द घे।

अदिया जाया, नौ मील टुरी सैड के वे पैर पे आदे, हाय हाय।

दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, बेटे इमाम बाकर की नजर पड़ी, का बाबा रुक वंज रत रोवड़ तो हुण टुरदा पे आए दुनिया तो, रुक वंज रत रोवड़ तो हुण टुरदा पे।

0: नजफ की तरफ देखकर बीबी कहती है, ओ मेरा किसे नु कुछ ना खड़ाला बाबा, ओ मेरे कायनात दा शरीफ बाबा, ओ मेरा सबर रखड़ाला बादशाह। बाबा इना लोका नु कौन दसाए, असी लखा दिया कहंदा छुड़ा दे रहे वे बाबा।
1: इमाम अली अलैह सलाम एक बार जंग में मौजूद, वहां पर मर्द खत्म हो गए, कत्ल हो गए, औरतों को लाया गया, हाथ में रस्सियां थी। इमाम अली अलैह सलाम ने बड़ी सख्ती से कहा, किसी की बेटी के हाथ में रस्सियां नहीं बांधते।
0: किसे नु कुछ ना कहण आला बाबा। नजफ दे पास से मुंह करके ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाया, ओ मेरा किसे नु कुछ ना कहण आला बाबा, असी कौन आयना नु कौन दसाए, असी लखा दिया कैदा छुड़ा दे रहे वे बाबा, साडिया कैदा कौन छुड़ाए।

मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद, बस सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद ज़हमत। तमाम इम्तिहान आपका नहीं इम्तिहान, मेरा नहीं इम्तिहान, उसका है जो इस वक्त दरबार में दीन हक का अलम बुलंद किए हुए है। आप अगर फेमिनिस्ट बनना चाहती हैं जरूर बनिए, लेकिन किसी को भी इस चीज का हक मत दीजिए कि कोई आपके अकायद या मजहब को इस्तेमाल करके आपको ये कहे कि औरत का तो कोई मुकाम ही नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात अब करने लगा हूं, अगर किसी मकाम पर किसी को समझ में आए, और खास तौर पे जो मसूरात सुन रही हैं, जो फीमेल सुन रही हैं, मुझे बताइएगा ये मैसेज आप तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। मिसाल पर मिसाल, अस्मा बिनते अमैस, हजरत सफिया, जनाब खतीजा, जनाब फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, मिसालों पे मिसालें आपके पास मौजूद हैं, जनाब आयशा, मिसालों पे मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल ऐसी दे रहा हूं जो किसी मकाम पर जाकर अगर आप समझ सकें तो बुलंद हाथों से दुआ जरूर कीजिएगा। 10 मुहर्रम 61 हिजरी असर के वक्त हुसैन इब्ने अली की दास्तां तो खत्म हो गई थी, करबला बचाई है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। करबला पहुंचाई है जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने।

आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करके आपसे इजाजत ले रहा हूं। अगर आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन करना चाहें, अभी ब्राह रास मैसेज भेजना चाहें, मैं आपके मैसेजेस ब्राह रास प्रोग्राम में शामिल करता हूं, उसके बाद फिर आपसे इजाजत लेते हैं। मेरा नाम ज़िशान नासिर है, आप इंस्टाग्राम पे जाके ज़िशान नासिर लिखिए, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आई डी है ZEESHANNASIR26 ZeeshanNasir26। यहाँ पर जाइए इंस्टा पे और मुझे मैसेज कीजिए, मैं अभी आपके मैसेज शामिल करके फिर आपसे इजाजत लेता हूँ।

अनम परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, मानी हमारे साथ मौजूद हैं, इकरा हमें सुन रही हैं, फातिमा जिशानियन हमारे साथ मौजूद हैं, सुंदस हमें मैसेज कर रही हैं, मानूर खान हमारे साथ हैं, लाइबा हमारे साथ हैं, शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया फातिमा हमारे साथ हैं, बिनते हवा हमारे साथ मौजूद हैं, गुलशन रावी हमारे साथ मौजूद हैं, किरण खान हमारे साथ हैं, पाकिजा हमारे साथ हैं, रानीन हमारे साथ हैं, कवल मलिक हमारे साथ हैं, जवेरिया मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सैयदा हिना हमारे साथ मौजूद हैं, नादिया चौहान हमारे साथ हैं, महानूर खान वंस अगेन, रोहान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, माँ हुसैन की राजी हूँ आप पर, बहुत बहुत शुक्रिया, मिसेज आमिर हमारे साथ हैं, मी टू लिसनिंग यू, थैंक यू सो वेरी मच मिसेज आमिर।

फैसल मलिक हमें सुन रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम यूएसए, थैंक यू सो मच भाई सुनने के लिए इतनी दूर से। इकरा हमारे साथ मौजूद है, कह रही हमारी जाने कुर्बान। मरियम मलिक हमारे साथ मौजूद है, कह रही लब्बैक या हुसैन लब्बैक। स्टैटिक हमारे साथ मौजूद है, ईशान भाई बस अब सलामत रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा अली हमारे साथ हैं, कभी किसी ने ऐसा बयान नहीं किया जैसे आप करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों की बस सदका है उनका और कुछ भी नहीं है। मेरा पढ़ना नहीं है, ये मेरा टैलेंट नहीं है, ये मौजा है जनाब हुसैन अलैहि सलाम का। आरजू अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर हसन हमारे साथ मौजूद है, कह रहे हैं खुश रहें भाई आप तैमूर हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हर कदम में कामयाबी अता करे, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा अली हमारे साथ मौजूद है, फरवा रुबाब मैसेज कर रही है, महरीन हमारे साथ मौजूद हैं।

अली का ये भी शेर है ये तीर से डरेगा क्या, अली का ये भी शेर है ये तीर से डरेगा क्या, असगर को हाथों में उठा हंसा दिया हुसैन।

नदीम खान चांदिया हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं बेहतरीन अकासी की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मदिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मदिया।